FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज
1: गजल हफीज होशियारपुरी।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: Smack them back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: तो ऐ ग्रोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम।
2: आइए सामईन सुनते हैं नाते रसूल मकबूल।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त तो हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, वो आपके लिए मौसम, बीमारियाँ, कोरोना वायरस, सियासी बीमारियों का इलाज लेकर आते हैं, तो उनके पास चलते हैं। शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं साथियों के साथ।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टनर नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा कि हम मौसम का भी हाल बताते हैं और सियासी बीमारियों और सियासी तब्दीलियों का भी हाल हम बताते हैं कि कोपनहेगन में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आज 17 से 18 यानी 19 के दरमियान मौसम जो है वो गर्म है, इतनी सर्दी नहीं, लेकिन बाहर बहुत खूबसूरत मौसम है, सूरज निकला हुआ है, लोग घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए कि ये पतझड़ का जमाना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं पतझड़, यानी कि अब तब्दीली आ रही है दरख्तों पे, नबातात पे, हर चीज पे तब्दीली आ रही है। इसी तरीके से इंसान के अंदर भी तब्दीली आती है, उसको हम कहते हैं फ्लू या इन्फ्लुएंजा का हम उसको नाम देते हैं, कि हमारे अंदर जो जिस्म के मुख्तलिफ हमारे जो जोड़ होते हैं उसके अंदर जो झिली होती है वो उसको रेशा भी कहा जाता है, वो तब्दील होता है। ये कुदरत का एक निजाम है, जैसे पतझड़ होता है इसी तरीके से, और वो इंसान के अंदर तब्दीली लाता है। और ये हमेशा जब पतझड़ का जमाना हो या खजा का बहार का मौसम आता है, तो उस वक्त भी आप देखते हैं कि ये चीजें इंसान के अंदर तब्दीली लाती हैं। तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए, थोड़े से ऐसा गर्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें जो है वो मौसम की जो तब्दीली है वो हमारे जिस्म पे असर ना करे। दूसरी चीज ये है कि 1 अक्टूबर से जो इन्फ्लुएंजा का टीका है और अपना कोरोना का टीका है, ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। आप अपने डॉक्टर से नहीं लगवा सकते, लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में या कौन से स्कूल में या कौन सी अपोथेक के अंदर ये टीके लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो हम हर दफा देते हैं वो ये है कि अगर आपको कोई क्रोनिक सिकनेस है, कोई ऐसी पेचीदा बीमारी है, डायबिटीज है, खुदा ना करे किसी को कैंसर, कोई ऐसी चीज है घर में, तो वो खुद अगर उम्र सीधा है, अबाव उसको इजाजत आई है कि वो अपना लगवा सकता है वैक्सीन, तो वो जब अपना टाइम बिस्टेल कराता है, अपना टाइम लेता है, तो उसके साथ वो अपनी बीवी या अपने घर रहने वाले बच्चों को साथ लेके जा सकता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, क्योंकि उनको आप ये कह सकते हैं कि भाई हम एक घर में रहते हैं और अगर इनमें से किसी को फ्लू हो गया या कोरोना हो गया तो क्या मुझे भी नुकसान होगा, तो वो लगा देते हैं। आपको सिर्फ प्यार से बात करनी है, कोई रिफ्यूजल नहीं होता, बाज़ुकात किसी का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एहतियात करते हैं और होता है इस तरीके से। और मैं खुद लगवा के आया हूँ, पहली को लगवाया है, कोरोना का भी लगवाया है और फ्लू का भी, कोई रिएक्शन कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कभी अगर बाहर निकलते हैं, पब्लिक में जाते हैं, किसी को ये नहीं आप कह सकते कि भाई तुम ये तुम्हें फ्लू हुआ, तुम सड़क पे क्यों घूम रहे हो सकता है वो फ्लू के साथ कोरोने की, देखें आगे कोरोने की एक किस्म थी, अब कोरोने की 8-9 किस्में हैं और आपको नहीं पता लगता ये कौन सा है। किसी कोरोना के साथ आपको पेट खराब हो जाता है, जिसको हम पेशेंट कहते हैं, थिन में वो कहते हैं, वो आपको हो जाता है, किसी के साथ बुखार हो जाता है, किसी के साथ आपका पूरा जिस्म टूटने लगता है, ये डिफरेंट काइंड के जो है इनके वायरस हैं। लिहाजा ये एहतियात करनी जो है ये बहुत जरूरी है, कोशिश करें और हमेशा आगे चल के रहें। और अगर अभी ये पतझड़ की जो है, आफ्टर वॉर्स की ये फेरी अभी शुरू हो रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, और वो एक हफ्ते के लिए करें या दो हफ्ते के लिए करें, तो बराए मेहरबानी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को अगर साथ दे के जा रहे हैं तो उनके स्कूल को लाजमन अवेयरनेस दें, और अगर आप खुद जा रहे हैं फिर भी आप अपनी बॉस सर्विस को, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉस सर्विस को इतला करें कि भाई हम इस स्टेट से इस स्टेट तक राइजर कर रहे हैं, और हमारा, और अगर आपको फेरियर पीरियड है फिर भी आप दिखाएं कि हम इस टाइम से हमारा फेरियर पीरियड स्टार्ट हो रहा है और इस पीरियड पे हमारा फेरियर पीरियड एंड होगा और हम फलाने मुल्क के अंदर जा रहे हैं, और ये बताने से वहां पे लिख जाता है कल को खुदा ना खासा वहां पे कोई बीमार हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि इंसान को जरूरत पड़ जाती है मदद की, तो वो डेनमार्क की जो वहां की एम्बेसी है या डेनमार्क के कोई भी वहां पे अदारे जो फंक्शनल हैं वो आपकी मदद को फौरन आ जाते हैं और इस तरीके से वो आपको डेनमार्क वापस ले आते हैं। ये जितने भी लोग येलो कार्ड रखने वाले हैं या अपना नेशनलिटी रखने वाले हैं सबके लिए बराबर के हकूक हैं, लेकिन हकूक उस वक्त आपके चलेंगे जब आप इनको ऑफिशियली बता कर जाएंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं हम क्यों बता के जाएं, हम तो ये कर रहे हैं, जब वो ये जालसाजी करते हैं तो उसका नुकसान बहुत सारा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, आपने ये देखा है कि अभी जो इमाम आरूस पे पकड़ा गया है उसकी कितनी वीडियोस अपलोड हुई है, कितनी मीडिया ने उसकी बेइज्जती की है, उसने कहा कि तुम आप खिलाफत ला रहे थे इस मुल्क
1: के अंदर। तो कानून काम कर रहा है तो कानून अपना रास्ता लेता है और कानून जो हरकत में आता है। तो शाह साहब छुट्टियों का आपने जिक्र किया, आप भी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो शाह साहब जरा अपना एजेंडा तो बताएं।
2: जी हमारा एजेंडा जो है वो यहाँ की सियासत पे भी है, यहाँ की सियासत पे हमने बिल्कुल काम करना है और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो कैटेगरी 5 है उसके ऊपर हम पे क्या हमें परेशानियां लाहक हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा मंसूबा है और पूरा उस पर अमल दरामद हो रहा है, मीटिंगों के लिए टाइम ले लिया गया है और जाने से पहले ही, ताकि कोई बहाना ना तलाश करें कि भाई वहां जाके वो जी फलाना नहीं मिला, वो लंदन चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो छुट्टियों पे चला गया, तो सारे प्रोग्राम सेटल हैं इंशाल्लाह वहां जाके, तो ये कैटेगरी 5 के ऊपर भी जो है ये बात खुल के होगी और अपने फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरे अदारों से भी मुलाकातें जो है वो मुकर्रर हो चुकी हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। ये वो कल करें, परसों करें, चौथ करें, दो साल के बाद करें, लेकिन इसके ऊपर आवाज जो है वो बुनियादी तौर पे वहां से शुरू होगी। और ये हम सिर्फ किस्से कहानियां नहीं कर रहे, हम लोग वहां पे वहां से लाइव जो है वो बकायदा वीडियो नशर करेंगे और बकायदा लाइव वहां से इंटरव्यूज करेंगे कि जो यहाँ आप लोग किसी भी दिन हो सकता है, सोमवार को, मंगल को हो, बुध को हो, किसी दिन भी हो सकता है, तो वो लाइव आप यहाँ पे आप जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर आप सुन सकेंगे, आप देख सकेंगे कि ये चीजें जो है जो हमने बात की है जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये काम जो ऑलरेडी वहां पे शुरू हो चुका है उसको हम हमारे जरिए से वो हम उसको पाया तकमील तक, जब मुलाकातें होंगी उनको जो रिटर्न देने हैं, जो उनको सारी तकलीफात हैं यहाँ की फैमिलीज की, इंश्योरेंसों की, दूसरी वो सारा कुछ कैटेगरी 5 की वजह से जितनी भी तकलीफात हैं उसके ऊपर खुलकर वहां पे बात होगी इंशाल्लाह।
1: जी शाह साहब, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। शाह साहब, सिटी काउंसिल ने 2027 के बजट पर दूसरी बार गौर किया है, कोपेनहेगन कम्यून में बजट पर आम पेशरफ्त, रिहाइश, स्कूल, समाजी शोभा जहाज, शहरी सहूलियात, तवज्जो का मरकज बने, पार्किंग की भी बात हुई। तो शाह साहब, ये जो बजट पर दूसरी बार बातचीत हुई है, बजट ने पास भी होना है और उस पर अमल दरामद भी होना है, आपके पास क्या खबर है?
2: देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये इतला करते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर है यहाँ की ब्रेकिंग न्यूज वो है वो कि हमारे जो स्पीकर हैं हमारे पार्लियामेंट के, सॉन्ग गिल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ये बड़ी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि वो वेंसा पार्टी के बड़े मशहूर सियासी खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि वेंसा के अंदर پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے تبدیلیاں آ چکی ہیں اور دوسری پارٹیز کے اندر بھی, کیونکہ گرین لینڈ کو لے کے اور اس کے ساتھ اندرونی حالات دے کے ملک کے اس وقت پارٹیز کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں, بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی طریقے سے. جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے. یہاں پہ جو چیزیں رکھی گئی تھی ان کو دوبارہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں لوگ جو ہیں وہ پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے ناراض لگتے ہیں, بعض پارٹیاں اس سے خوش نہیں. اس سے یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کہیں یہ پارٹیز جو ہیں یہ دوبارہ جو سامنے آبائٹ کر رہی ہیں, کہیں کہ یہ ساتھ نہ چھوڑ دے اور حکومت جو ہے وہ کریش نہ ہو جائے. تو اس لیے یہاں کی جو سوچ ہے وہ کافی تبدیل ہو رہی ہے, کیونکہ جو بڑے لیڈر ہیں اس وقت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یورپ کے اندر جو یورپ کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اپنے قدم جو ہیں وہ مضبوطی سے رکھ لیں اور ہم وہاں کوئی نہ کوئی پوسٹ جو ہے وہ لے لیں, تاکہ یہاں سے گڈ بائے ہونے کے بعد ہم وہاں پہ کام کر سکیں اور اپنے انفلوئنس جو ہے اس کو قائم دائم رکھ سکیں. لیکن اب یہاں پہ پریشر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یورو کی آواز اٹھ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یورو رکھو, لکھا بھی جا رہا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈینش کا گرون ہی ہماری پہچان ہے. لیکن ہر ملک کی اپنی اپنی پہچان تھی. انہوں نے جب فلس ایک پورا یورپ بنایا تو انہوں نے اپنی پہچان کو ختم کر کے تو یورو کو اپنایا, تو ڈنمارک کو بھی آخر یورو میں جانا پڑے گا اور یورو کو لانا پڑے گا, کیونکہ اس سے اکنامیکلی جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتر ہوں گی. ایکچولی ڈنمارک نے جو انکار کیا تھا یورو میں آنے کا, اس کا مقصد یہ تھا کہ انگلینڈ اور یورپ سے جو بڑی بڑی فرمیں ہیں وہ بھاگ کر ڈنمارک آ جائیں گی اور یہاں پہ ان کو کافی سہولیات ملے گی اور یہاں پہ بڑے بڑے بینک آ جائیں گے. لیکن وہ کیونکہ سیاسی نا تجربہ کاری کی وجہ سے یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ ان کو یہ چیزیں سامنے پیش نہیں کر سکے, تو وہ لہٰذا کچھ وہیں رہے, کچھ دوسرے ممالک میں جو بہت ہی سستے ہیں بلغاریا اور دوسرے آگے پیچھے وہاں پہ وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے قدم وہاں پہ جمانے شروع کر دیے کیونکہ وہ ان کو کافی سستے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب یہاں کے جو معاشیاتی ادارے ہیں وہ لکھتے کچھ ہیں اور بتاتے لوگوں کو بتاتے کچھ ہیں, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو غربت کی لکیر جو ہے اس سے بھی نیچے اب لوگ جو ہیں وہ اس مہنگائی کے زمانے میں رہنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کے حالات بہت ہی گمبھیر ہیں. لیکن کیونکہ ان کے پاس اب بیچنے کے لیے صرف ان ماندار پرابلم رہ گئی تھی اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی اب ان کے لوگ اب ان کو سننے کو تیار نہیں, بالکل تیار نہیں. تو راجہ صاحب یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر کافی فالٹس ہیں اور کافی چیزیں ایسی بجٹ میں رکھی گئی ہیں کہ جو
1: 70 ملین کا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے پارکنگ کے لیے اور اس کے بعد سرسبز بنانے کے لیے, سہولیات سے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے, گرینری کے لیے رکھا گیا ہے. تو یہ تو خبریں آ رہی ہیں, جب بجٹ پاس ہوگا تو افیشل بات تو اسی وقت جو ہے وہ سامنے آئے گی.
2: دیکھیں جی, جو 70 ملین رکھا گیا ہے تو یہ پارکنگ کا یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ جو پارکنگ سیلس کے باہر ہیں, جو باہر کی سیلس کے ہیں وہ ڈنمارک میں آ کے پیسہ کما رہی ہیں, یہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے پیسہ لگائیں اور پھر وہاں سے وہ بنی بنائی پارکنگ لے کے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے وہ
1: پارکنگ کی جگہ ہوگی تو پارکنگ پلیس وہ بنائیں گے نا.
2: دیکھیں جی, پارکنگ کی جگہ انتہا سے زیادہ پارکنگ پلیسیں ہیں ڈنمارک میں, لیکن کیونکہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے لوگ جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ کبھی خود جا کر وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں رکھتے, وہاں پہ جا کے قدم نہیں رکھتے, دیکھتے نہیں, وہ بیٹھے ہوئے نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ ہاں یا نہ کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے جو امیر لوگ ہیں, جو بگ فرمیں ہیں, بڑی بڑی عمارتی بلڈنگز بنانے والی فرمیں ہیں وہ, اور اس طرح کی دوسری جو پارکنگ فرمیں ہیں وہ پیسہ کما رہی ہیں. لگتا پیسہ گورنمنٹ کا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یا آپ جگہ ہمیں پارکنگ آپ نے بنا لیجیے, ٹھیک پہ ہمیں دے دیں, اب ہم اس کو ہم آپ کو فائدہ دیں گے. وہ خود زیادہ پیسہ لے جاتے ہیں, ٹیکس بھی نہیں پے کرتے اور گورنمنٹ کو تھوڑا سا پیسے چند ملینز دے کے, 100 ملین دے کے, تو وہ लोगों की जो नर्व सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने लोगों की

0: में दिक्कत होगी तो वो पार्किंग जो बिल्डिंग के नीचे है शाह साहब, वो सस्ती करनी चाहिए ताकि बिल्डिंग वाले खुद नीचे पार करें।
1: हाँ, ये सवाल आपका ठीक है, वो करें। वो ये है कि आप ये देखें कि वोदोवा और दूसरी जगह और कोपेनहेगन में जितनी बिल्डिंग्स नई बनी है उसके अंदर आपको नीचे पार्किंग प्लेस खरीदनी पड़ती है। आप उसको खरीदें या उसको लाए करें। अगर आप उसको खरीदते हैं और उसको जैसे आपने ऊपर फ्लैट खरीदा है इसी तरीके से आप उसके पैसे देंगे बकायदा, और वो फिर आप अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आप उसको लाए करते हैं तो वो लाए बहुत महंगा है, तो फिर लोग जो है वो मजबूरन बाहर खड़ा कर देते हैं और दूसरी जगह पे इस ऐसी स्ट्रीट को फाइंड आउट करते हैं जहां से वो पैदल चल के अपने फ्लैट तक आ जाए ताकि उनको ना जुर्माना लगे ना। इसलिए पार्किंग प्लेसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो बिल्डिंग्स बनती है और बिल्डिंग्स के साथ जो इन्होंने बहुत पार्किंग प्लस जो है वो दूसरा, आप ये देखें कि मेजोरिटी इस वक्त अगर मेजोरिटी आप बड़े बड़े फ्लैट्स के ऊपर जाते हैं जहां पहले फ्री पार्किंग होती थी, अब वहां पे क्या, अगर आप एज ए गेस्ट भी जाते हैं तो पहले जिसके घर आपने जाना है विजिट करने के लिए वो कार्ड लेके खड़ा होगा कि भाई आप हमारे घर में गेस्ट आए हैं और इतने बजे आए हैं और इतने बजे आपने जाना, वो आपकी गाड़ी के अंदर कार्ड रखेगा फिर आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो तकरीबन 1,000 के करीब आपको जुर्माना लग जाएगा। और ये चीजें जो है ये कौन
0: तो
1: कर रही है,
0: ये कम्यून कर रही है चाहिए ना, क्या ये जिम्मेदार लोग नहीं है जो कम्यून में बैठे हुए हैं, या इनको इतने जो इतनी जो दुश्वारियों का पता ही नहीं है?
1: ना तजर्बाकारी, स्कूलों में से, कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से पढ़ के बाहर आ गए हैं, तजर्बा है नहीं है, पब्लिक का तजर्बा है नहीं है, लोगों के रहन सहन का तजर्बा है नहीं है, कोई सोशल वर्क किए हुए नहीं है। जी मैं चंद ऑर्गेनाइजेशन का मैं मेंबर बन चुका हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया, वहीं से वो डिबेट करके बाहर आ जाते हैं, उनको इन चीजों का तजर्बा नहीं, उनको आवाम की मुश्किल का बिल्कुल पता नहीं, इसलिए वो ये चीजें जो है वो उनकी समझ से बाहर होती है। और फिर अगर उनको थोड़ी बहुत समझ भी है तो वो कौन सा बजट में ये पढ़ते हैं कि कौन सी पार्किंग में कौन कौन से इलाके में ये पाबंदियां लगनी चाह रही है, वो तो बस खामोश हो जाते हैं। और जो फोरमैन होते हैं या जहां वहां पे उनके जो बंदे बैठे होते हैं उनकी छोटी पार्लियामेंट के अंदर कम्यून के अंदर, तो वो तो यस सर करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने बैनिंग की होती है, वो उन्होंने पार्टियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है, मुआहदा किया होता है कि हम आपस में मिलकर ये सारा काम जो है इसको लाएंगे, तो वो तो उनको तो हर दफा पता होता है कि भाई अगली दफा भी हम नंबर वन ही होंगे, टॉप पे होंगे, खसमन खाई ये नीचे वाला कैंडिडेट जो दूसरे बैठे हुए हैं इनको हो सकता है ये आए या ना आए, मैं तो 100% जो है वो अगली दफा भी मेरी सीट जो है जो कौंसलर पक्की है, तो वो जो है वो इस तरह की बातें ना डिक्लेयर करते हैं ना ही उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ये चीजें जो है ये प्रॉब्लम है।
0: लगता है कि आपकी बातों से लगता है आप भी वेंस्टा को ज्वाइन करेंगे, अगर ज्वाइन करते हैं तो किसके कंधे पर हाथ रखेंगे? आजकल तस्वीर बाहर आ रही है, लोगों ने लीडरान के कंधों पर हाथ रखा हुआ है।
1: जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इंशाल्लाह वेंस्टा को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक लकीर के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मैंने अभी तक मेंबरशिप नहीं दी, लेकिन अगर वो मुझे मेल आ जाती है ये अगले हफ्ते आ जाती है या चंद दिनों के अंदर अंदर आ जाती है तो मैं इंशाल्लाह ताला।
0: साहब ये इस हफ्ते की ब्रेकिंग न्यूज है।
1: जी बिल्कुल, वेंसा जो है वो आपने देखा है कि वेंसा के अंदर जो इनकलाब आया है, और वेंसा के साथ आपको पता है कि यहाँ पे दूसरी भी जो यहाँ के पाकिस्तानी सियासी जमात में भी इंकलाब आया, तो इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया और अक्टूबर में मैंने आपको पहले ही आपके रेडियो पर कहा था कि एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा सियासी इंकलाब आएगा, क्योंकि मेरा जो टूर होगा पाकिस्तान का और यहाँ का
0: तो मैं इंकलाब का हिस्सा है।
1: जी बिल्कुल, ये इंकलाब का हिस्सा है। आप देख लेंगे सॉन्ग गेल ने बहुत अच्छी बात की है कि उसे फॉरमैनशिप से अपना इस्तीफा दे दिया फलकित सिंह के, अब वो खुलकर पार्टी के अंदर काम करेगा, पार्टी को पुराने लीडरान की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मसला जो है वो सिर्फ लैंड्समैन का नहीं है, काश्तकार का मसला नहीं है, यहाँ के जितने

0: बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, यहाँ के पढ़ा लिखा लोग जो है वो भाग रहे हैं मुल्क को छोड़कर। ये यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसे आप अभी ये देखें कि वो जो हमारी एक बच्ची जो है वो अदालत में ये सर पे दुपट्टा डाल के थोर कलर पहन के वो नहीं जा सकती, तो उनको राइट होना चाहिए कि हर बंदे को साइयों में।
1: ये कानूनी फाइट है, कानूनी फाइट होनी चाहिए।
0: नहीं, कानूनी नहीं है, आईन आईन इसकी इजाजत नहीं देता, आईन इसकी इजाजत नहीं देता, आईन इसका था औरत के जो लिबास है उसके हकूक की तहफ़ देता है। तो हम कानून को, मैं कानून की बात नहीं करता, मैं आईन की बात करता हूँ कि जिस चीज में आईन तहफ़ दे रहा है और उसके ऊपर बात की जा सके तो उसके ऊपर यह कानून जो है।
1: डिबेट है, चलती रहेगी। शाह साहब आखिर में क्या कहेंगे कि हमारे लोगों को क्या करना चाहिए इन हालात में?
0: हमारे लोगों को ये चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो इकट्ठे हो सकते हैं, कोशिश ये करें कि ऐसा कोई काम ना करें जो गैर शरी हो, गैर कानूनी हो। कोशिश ये करें कि जो इस वक्त सबसे बड़ी तीन चीजें जो है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, एक तो ये कि जिन्होंने डैनिश डिवोर्स ली हुई है और इस्लामिक तरीके से इकट्ठे रह रहे हैं वो इससे पर्दा करें और इससे जो है वो पीछे हट जाए, क्योंकि डिवोर्स डिवोर्स होती है, ख्वाह वो डैनिश हो ख्वाह वो किसी तरीके से हो, तलाक का वो करें, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ कोपेनहेगन में उन्होंने जो नंबर इशू किए हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब है और इसमें सारे जो है वो ज्यादातर मुसलमान आ रहे हैं, तो ये उनकी तादाद है। तो इससे दूर है। नंबर दो पे जिन्होंने फौज पेंशन ली हुई है, बीमारी की पेंशन ली हुई है, वो अपने डॉक्टरों के पास रेगुलरली जाएं, उनको अपनी बीमारियों के बारे में बताएं जो सही है, और जो वो दवाइयात लिख के देते हैं वो मेडिसिन वो जरूर लें, क्योंकि अगर वो मेडिसिन नहीं लेते और सिर्फ इस बेस पे कि वो मैगी मिलती है और वो नहीं ले रहे तो फिर उनका जो है वो पता साफ है, उनके ऊपर केस बनेंगे, उनको सब पैसे, क्योंकि ये चीजें जो है कम्यून का और डॉक्टर का।
1: ये दवाइयां जो है वो मुफ्त नहीं होनी चाहिए, अगर सही पेशेंट है तो पेशेंट के लिए, या अगर अस्पताल में इलाज फ्री है तो बाहर क्यों नहीं है?
0: क्योंकि वो आपका रेडियो नहीं ना सुनते, वो समझते हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये बकवास कर रहे हैं, ब्लफिंग कर रहे हैं। अगर जिसको फोर्थ जिस पेंशन मिली हुई है या जो जिसकी होम इकोनॉमी का इतनी ज्यादा नहीं है, इतना घर का पैसा ज्यादा नहीं, तो वो वहां पे जाके कह सकते हैं कि भाई देखें अपनी बॉस सर्विस में कि हमारी मदद की जाए, तो वो देखते हैं, फिर वो इकोनॉमिकली देखते हैं कि भाई इस आदमी ने वाकई इसके इतनी दवाइयां, इसकी दवाइयां महंगी हैं, तो वो फिर आपको बकायदा उसमें परसेंटेज जो है आपको लगाते हैं, कभी आपको 85% या 70% से ऊपर ऊपर जितने भी हैं वो दवाइयां महंगी हैं वो आपको सस्ती करते हैं, आपको 85% भी देते हैं, तो उसमें आपको चंद एक करोड़ के दवाइयां मिलती हैं, तो बेशक वो 800-900 करोड़ की हो आपको 50-60 करोड़ में मिलती है। तो ये चीजें जो है जो आप वहां पे जाएंगे
1: कानून से फायदा उठाना चाहिए, कानूनी फाइट करनी चाहिए, और हमारे सिटी काउंसिलर जितने भी हैं जिस इस कम्यून में बैठे हुए हैं उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा अगले प्रोग्राम में शामिल होंगे।
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़ जी।
1: समय नाजरीन, ये थे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब। समय नाजरीन, हमारा मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई दलायल है तो आपके लिए आपकी आवाज़ का टाइम आज।
2: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: समय हमने इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम बनाए, काफी बनाते रहते हैं, इलेक्शन को कवर किया, स्वीडन के इलेक्शन की बात की, चूंकि स्वीडन के इलेक्शन की इसलिए बात हो रही थी चूंकि वो कम्यून के भी इलेक्शन थे, आमद के भी इलेक्शन थे, पार्लियामेंट के भी इलेक्शन थे, उस पर हमारे उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया, चूँकि वो डैनिश दोहरी शरीयत का भी मसला था, वोट दोनों तरफ देने का हक था, अम्बेसियों में भी आप वोट दे सकते थे और उसके अलावा जाकर वोट आप डाल सकते थे, तो जिसको वोट का हक मिला होता है उन्होंने वोट अपना डालना होता है। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस चीज़ों को प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया है, चीज़ों को बड़े करीब से भी देखा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद है शायद नसीम, शायद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राजा साहब, आपको भी खुश आमदीद। इतवार का एक सुहाना मौसम है, धूप लगी हुई है कड़ाकेदार,
1: बड़ी कड़ाकेदार धूप है, इसमें कोई शक नहीं है। जो है विटामिन डी जो है मुफ्त में मिल रही है, लेकिन कमरे के अंदर तो नहीं मिलती क्योंकि शीशे है हमारे, धूप तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जो बाहर विटामिन डी मिलती है वो तो हो रही होती है, उसका मजा ही कुछ और है।
2: बिल्कुल, क्या कौमे है ये इस धूप का फायदा उठाती हैं, बाहर निकलती हैं, बैठती हैं, एंजॉय करती हैं, और एक तरफ वो कौमें हैं जो घरों के अंदर सोफों में बैठी हैं, साजिशें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ।
1: नहीं, वो भी तो मजा आता है लोगों को ना, वो भी तो काफी है ना, अभी अच्छी लगती है,
2: वो भी काफी है।
1: अच्छा, शायद बताएं, स्वीडन के इलेक्शन हो गए, सारी चीजें तस्वीर सामने आ गई, और मेम्बरान जो बने या ना बने, हुकूमत भी अभी बनी नहीं, जिस तरह डेनमार्क की 4 महीने लगे थे बनते बनते, आपकी भी यही लगेंगे?
2: हमारे आज से 4 साल पहले स्वीडन के इलेक्शन हुए थे, यही वाले 4.5 साल पहले, बात 4 साल पहले की बात है, तो तब हमें 5 माह लग गए थे तकरीबन गवर्नमेंट बनते हुए, 5 माह से ज्यादा, आपको शायद याद हो, ये आज 2026 से 2022 की बात है, बात 4 साल बाद इलेक्शन दोबारा हुए हैं। तो स्वीडन का ये मैंने आपको बताया था लास्ट जब मेरी आपके यहाँ पर इंटरव्यू आप हो रहा था आपके दोस्त से, तो उसमें दोस्त से 4-5 मेहमान और भी थे, तो मैंने आपको बताया था कि स्वीडन की जो पिछले 10-12-15 सालों से आप ले जाए, बल्कि 20 सालों से ले जाए, इनकी सियासत मीडिया और लॉबिंग के गिर्द घूमती है। पहले इसको खास तौर पर मीडिया इसको जो है ना मीडिया के जरिए इसको इसकी लॉबिंग कराई जाती है, फिर इसको खास जो क्या कहते हैं एक ग्रुप है उसके जरिए इसकी लॉबिंग पूरे स्वीडन में कराई जाती है, और फंडिंग इसकी बाहर से होती है, मैंने आपको बताया था, वो उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। गवर्नमेंट वो कभी भी एक आने नहीं देते जिसके जिसमें 2/3 सीटें या ज्यादा सीटों से एक आसानी से कोई गवर्नमेंट एक वो बना ले, तो वो ऐसे ही रखते हैं कि इसको, मैं यही देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों से इसको वो बराबर ही लेके जा रहे हैं, यानी जो भी इलेक्शन होता है उसमें एक का फर्क होता है या बराबर कर देते हैं उसको, या फिर उसके बाद वो होता है कि वही जो ब्लॉक है रेड है या ब्लू है, 2 ब्लॉक है, वही ब्लॉक जो थोड़ी सी सीटें लेके जीता भी है तो उसी ब्लॉक के अंदर उसी के खिलाफ उसका अपना अपने ब्लॉक की दूसरी पार्टी आ जाती है, तो फिर ऐसे गवर्नमेंट नहीं बनती, फिर जो है ना वो काम जो मामला है ना वो वहां पर ही क्या कहते हैं पढ़ा के 4-5 माह तक या इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, तो आप कभी कहते हैं कि वही वाली गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी जो पहले थी, ये खैर ऐसा तो नहीं होता, वही तो नहीं आ सकती, लेकिन गवर्नमेंट फिर आपकी मजबूत नहीं बनती, गवर्नमेंट आपकी उसी तरह रहती है जिस तरह पहले चल रहा है पिछले कितने सालों से। तो स्वीडन में ये आखिरी जो गवर्नमेंट आई है जो रही है इसमें तो जो अमीर लोग हैं वो अमीरतर हो गए हैं, और जो उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की गई है टैक्स में,
1: तो अब दुनिया में ट्रेंड चल रहा है अमीर होने का, तो हर आदमी अमीर होना चाहता है, सियासतदान भी अमीर होना चाहते थे, पहले सियासत करते थे अब अमीर होना चाहते हैं, चलें ये तो चलता रहता है, लेकिन जो हमारी अपनी कम्युनिटी है जिसको मैं गैर मुल्कियों की कम्युनिटी कहूँगा, क्योंकि अब स्वीडिश हैं गैर मुल्की तो नहीं है, उन्होंने नेशनैलिटी ले ली है, और जिन्होंने नहीं ली वोट का हक था, तो ये हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आती इस वोट की अहमियत क्या है, फिर वही पाकिस्तानी तर्ज की सियासत शुरू हो जाती है।
2: देखिए जी राजा साहब, पहली तो बात यह है कि जब आपने यहाँ पर सियासत करनी है, यहाँ पर आपने इलेक्शन लड़ना है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात करूंगा, सारी लोगों को सिंपल समझ आ जाएगी, घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कहता रहूंगा कि आपने यहाँ की सियासत के मुताबिक चलना है, जो उनका सिस्टम है। आपने यहाँ पर अपनी देसी सियासत नहीं करनी, आपने लोगों को अपना अपना मंशूर बताना है, अपनी पार्टी का जो आपका मंशूर है उसको सच सच बताना है। आपने आपने कोई देसी सियासत नहीं करनी, झूठ बोलेंगे तो झूठ यहाँ पर ज्यादा देर नहीं छुपा जा सकता। जो निचले लेवल से कोई अपनी सियासत शुरू कर रहा है यहाँ पर, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो पार्टी के अंदर एंटर हुआ है, जो इसको जिसको टिकट मिली है, कोई भी है जी, यहाँ पर मैं आगे जाके बात करूंगा, वो इस बारे में भी आप सवाल करेंगे। तो वो आपने जो अपनी सियासत शुरू की है, अपने आपको टिकट दी है पार्टी ने, चाहे काउंसिल की है, चाहे आपको क्या कहते हैं पार्लियामेंट की कोई दिया टिकट, तो वो आपने उसको सच बयानी से काम करना है। पक्ष नहीं, सियासत की तरह नहीं चलना, आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ झूठ ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, आप पकड़ जाते हो। तो और दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं जो किसी को भी वोट देते हैं, जो तो वो भी जनाब पक्ष की सियासत को मजे नजर आके ना दे। गो के यहाँ पर स्वीडन में बहुत से लोग नहीं आए हैं, कोई किसी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल से ये लोग, कोई स्टूडेंट है, कोई पुर्तगाल से आया है, कोई यूनान से आया है, ज्यादातर पुर्तगाल से आए हैं, वीजे खुले हैं, स्टूडेंट आए हैं, तो वो उनको सियासत का नहीं पता है यहाँ की, तो यहाँ की सियासत को उसी तरह लेते हैं जैसे पाकिस्तान में आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है। तो ऐसे नहीं होता, आपने यहाँ पर पहले इसका मतालिया करना है, सियासत को समझना है कि किस तरह की सियासत है, क्या है, तो उसके मुताबिक आपने किसी के इंडिविजुअली किसी की जात के ऊपर पर्सनली आपने किसी को वोट देना, वो आप करेंगे तो फिर आपका वोट जाया हो जाएगा, क्योंकि आपने देखना है कि किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, उस पार्टी का मंशूर क्या है, वो पार्टी पहले आपके जो इस स्टूडेंट में इंतजार में उसने आपके लिए क्या किया है, उसको जाके पीछे देखें। एक वाहिद इंडिविजुअली बंदे को देख के या किसी को भी देख के आप वोट ना दें, पार्टी को देखें, पार्टी ने पहले क्या किया है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो और जो जो इलेक्शन कैंपेन में जो जो चल रही होती है, जो पिछले 3 माह से चल रही थी, जिसमें बहुत सी पार्टियां अपना मुद्दा बयान कर रही होती हैं, उसको उस हर एक चीज को जो उनकी कैंपेन होती है उसको देखें, उसमें पार्टियां क्या कह रही हैं और वो आपके आपके खिलाफ क्या जो है ना बकवासियत कर रही हैं, खासकर फॉरनर्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसको देखें। और माजी में जो है ये सोशल डेमोक्रेट ने कोई ज्यादा अच्छा किरदार अदा नहीं किया, मैं सोशल डेमोक्रेट फॉरनर के हक में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, मैं इसको इस तरह लूंगा यहाँ पर वो कहते हैं स्वीडन में। तो सोशल डेमोक्रेट या हमारे यहाँ पर मेरे तो मालमो में इनकी क्या कहते हैं हुकूमत रही है, मालमो में जो है इनकी, तो अभी भी है इनकी, तो उसमें कोई ज्यादा जो वादे किए उन्होंने उन्होंने कोई वो चीजें जो है वो उसको पूरा नहीं किया, उसके उस तवक्को पे पूरा नहीं उतरे, तो वो उसको देखें आप पहले।
1: तो इसमें कोई अपना कसूर भी है या कि पार्टियों का कसूर है?
2: देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे जो जो फॉरनर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है देखें सोमालिया का एक पार्लियामेंट के अंदर आ गया है जिसको स्वीडिश नहीं आती और वो लोगों ने इसको वोट दिया है, क्योंकि वो हक की बात कर रहा था, उनको पता था कि ये हमारे लिए जाके वो कहते हैं वो लड़ेगा और वो सच और हक की बात कर रहा था। अब देखें और बहुत से फॉरनर्स आए हैं उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, काउंसिल तो बहुत ज्यादा बने हैं, फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें तुर्की है, कुर्दी है, बाल्कन कंट्रीज के लोग हैं, वो तो छोड़ दें, काउंसिल तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होना, लेकिन पार्लियामेंट के आना बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग आए हैं स्टॉकहोल्म के अंदर जो पार्लियामेंट है, और वो उसमें मैं आपको बता दूं कोई पक्ष नहीं आया, ये भी बता दूं आपको।
1: वजह
2: ये है कि इतफाक नहीं है, एका नहीं है, झूठ है, अपनी पक्षनी सियासत भी में इन्वॉल्व करते हैं, दानिशता ना करते हुए भी कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ की 3री जनरेशन वाच कर रही होती है, अब 3री जनरेशन है ये, मैंने फिर बताया था कि स्वीडन में बहुत से लोग पक्षन से आए हैं, स्टूडेंट हैं, वीजे लगा के, उनके वीजे नहीं है अभी, वो किसी किसी पेंडे नहीं चढ़े, तो वो वही वो बात ही नहीं करते, वो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए वो ट्रक की बद्दी के पीछे लग जाते हैं कि यार ये जो बंदा है ये जीत के कौंसिल तो मेरा वीजा लगा देगा, या मेरे वीजे के लिए कोई को करेगा, ऐसे नहीं होता। कौंसिल वीजा लगाएगा आपका? कैसी यार वैसे बेवकूफी है ये, कि कहाँ पे आपकी तलीम
1: तो
2: आपने हासिल
1: सर
2: की
1: ये
2: है?
1: क्यों नहीं बात समझ आती? ये एक बड़ी फेलस बात हो गई है कि पाकिस्तानियों का आपस में इत्तेफाक नहीं है, ये कोई बात तो अच्छी तो नहीं है, ये तो बहुत नेगेटिव बात है।
2: देखें ये इसको जड़ से पकड़े ना, आपका जड़ क्या है? आपका मुल्क क्या है? वहां पर कोई, वहां पर कोई चीज चल रही है फेलस? ये सच है ना, सच बात करनी चाहिए। जब सच्ची बात नहीं करेंगे, जड़ से चीज को नहीं पकड़ेंगे, तो हम उसको ऊपर से शुरू करेंगे। तो देखिए ना, ये आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? तो आप ये अपना राजा साहब, 50 लाख बंदा आपका बरौने मुल्क आ चुका है, स्वीडन के वीजे खुले हुए हैं, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं स्वीडन स्टूडेंट छोड़ के पाकिस्तान को, और वो उनमें से बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। ये बात ये कलमैया है, ये सोचने की बात है, लेकिन सोचता कोई नहीं है, इसके ऊपर बातें करते हैं। आए हैं कि नहीं? आ नहीं रहे? आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मुझे तो आपसे ज्यादा पता है, स्वीडन में रहता हूँ। दूसरे ममालिक जो है जहां पर वीजे खुले हैं, जो पोलैंड तक लोग आ रहे हैं छोड़ के अपना मुल्क, क्या वजह है? मजबूरी, गरीबी, काम नहीं, ये सारी। ऐसे तो कोई किसी का छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता। तो वो है जड़ है, आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं। हाँ अभी जो बात की, जो मीर है मीर हो गया, खरब जो खरबपति जो अरबपति था वो खरबपति है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है, कोई पूछने वाला है? इधर तो पूछता है ना कि शायद तेरे को पैसा कितना आया है, लो जी साहब दो, साहब दूंगा, जो क्लियर हो गया। डरते हैं लोग यहाँ पे, एक बार सोचते हैं, यहाँ पर लोग करते हैं जो वो कहते हैं, सिस्टम यहाँ का वो पकड़ता भी है जो फ्रॉड करते हैं, जो जो अमीर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर टैक्स दिया वो रहते हैं, टैक्स दे के अपना सारा कुछ उन्होंने अपना क्लियर किया हुआ है, चाहे वो सियासत में आया हुआ है, चाहे मैं भी बात करूँ, जो चाहे सियासत में है वो भी क्लियर होके आया हुआ है, और पहले क्लियर होके आया और बाद में कैसे अमीर हुआ वो भी क्लियर हो गया। ये सिस्टम तो यहाँ चल रहा है ना, उसके पता चलो, वो तो एक दूसरी बहस है
1: तो
2: कि
1: गैर
2: यहाँ
1: मुल्कियों का कोई भी सिस्टम जो है वो सियासी लिहाज से या अपनी कम्युनिटी के लिहाज से वो सही नहीं चल रहा, इस पर ज़ाती इख्तलाफात आपकी बातों से पता चलता है। लेकिन ये एक टैक्सी ब्रांच में गैर मुल्कियों की इजारादारी थी और ये दोबारा जो है वो कोई और कंपनियां आ गई हैं, वो उनकी इजारादारी बन रही है, इसका मतलब है कि यहाँ भी नाइतफाकी है।
2: इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप टैक्सी की बात कर रहे हैं, गैर मुल्की जो कंपनी उधर आई है कोई, और वो उसने अपनी इजारादारी कायम की है, जारी बात है, हर एक को हक है यहाँ पर, आपका सिस्टम उन सब ने हर एक को बिजनेस के मौके दिए हैं, कोई भी आ सकता है। गैर मुल्की हम थे, मेरे वालिद थे, टैक्सियां थी, करते थे, बूढ़े हो गए हैं, पेंशनिस्ट हो गए हैं, बहुत से अंकल बहुत से बुजुर्ग कर रहे हैं, लेकिन इसमें यार ये तो भी देखना चाहिए यार साहब, इसमें हमारा अपना कसूर है। हमने आज तक गैर मुल्कियों ने, मैं हर खाली पाकिस्तानी का नाम नहीं लूंगा, इसमें सारे गैर मुल्की हैं, कोई इसको ये उधर ना ले जाए नेगेटिविटी में, सारे गैर मुल्की हैं, जबकि गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी वहां पर 90% से ऊपर जो थी वो टैक्सी वो कंपनियां थी जिसके वो मालिक थे। और क्या आपने आज तक कोई अपना संथाल बनाया? नहीं, बना ही नहीं सके। हाँ माजी में 30, 35, 40 साल पहले बनाया था, उसमें आप लड़ पड़े थे, हुस्न सेक्सी नाम था, लेकिन बहुत पुरानी बात है वो, 90 की बात है, तब भी आप आपस में लड़ पड़े, अभी अभी नात पाकी की बात हो रही है, वो हुस्न फिर आपसे वो डैनिश ले गए छीन के, वो पहला गैर मुल्की थे जिन्होंने वो खोले था हुस्न सेक्सी, उसके बाद आप कोई कुछ नहीं खोल सके, आपका संस्कार ही नहीं था अपना, जब तक आपका संस्कार ना होता इतफाकी के साथ तो आप आगे नहीं जा सकते। फिर उसके बाद आपने कोई स्टैक यूनियन नहीं बनाई, यानी कि एक मजबूत एक ताकतवर जिसकी बुनियाद आप रखते हैं आज से 10 साल पहले रखते थे। टैक्स नियम खत्म हुई थी 2018 में, हर उसका कंट्रोल होल्ड था, वो चेक और बैलेंस रखता था, और वही वॉन मैन का बिलिंग देता था, चलो वो खत्म हो गई, खत्म कर दी गई या जो भी हुआ, उसके बाद आपने फिर आपको 10 साल मिले, आज 2027 आ गया है, 9 साल आपको मिल गए, 9 सालों में आपने कोई स्टैक फिनिंग नहीं बनाई, अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी गाड़ी लेके काम पर निकल जाते, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी दिहाड़ी लावा, क्योंकि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपको स्टैक फाइनिंग बनानी पड़नी थी। और ये पता क्या कहते हैं, जब ये बात करते थे ना कोई कोई मेरे जैसे बात करते, ओ यार इंज नहीं होता, बड़ा मुश्किल है हर चीज को, हमारी कौम ने रिस्टार्ट ही मुश्किल रखा हुआ है। आप ये काम कह रहे हैं ना करना, कोई भी काम सियासत, ओ यार ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ना ही रखी हुई है यार। अल्लाह शुरू करो, अल्लाह ताला ने मदद करनी है ना, उसका नाम लो, कहते बिस्मिल्लाह करो नेक नीति के साथ, वो आपकी अल्लाह मदद करेगा। लेकिन ना इसकी बुनियाद ही ना सही है, इन बदबख्तों ने रखी हुई है, ओ नहीं यार ये नहीं हो सकता, हर चीज में वो नहीं यार ये नहीं हो सकता। तो देखो आप यहाँ पहुंच गए, तो ब्लेम हम किसको दें, गैर मुल्की जो आई है यहाँ कंपनी उसको ब्लेम दें,
1: चले तो आना था जाहिर है, ये कंपनी आगे कानून से आएगी। आपस मार्केट में जो है वो लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपकी ब्रांच में जो टैक्सी ब्रांच है तनख्वाह अच्छी मिल रही है, बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं, लोग तो जाएंगे।
2: ये नहीं कि वो कौन सी गैर कानूनी आई है, अभी आपने बात की है, यहाँ के कानून के पूरे जो कानून के जो प्रोटोकॉल थे पूरे करके आई है, गैर कानूनी तो वो कोई नहीं आई, उसके ऊपर हमने वैन डालने हैं, रोना पीटना है। आप ये जब चीज हो जाती है तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, हम लोग डोना शुरू कर देते हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि आपने कोई मजबूत कोई यूनियन बनाई होती है ताकतवर, सारे वॉनमनों ने मिलके, बहुत पुरानी अब तो बहुत लेट है ना, अब तो नहीं बन सकती, बनाई होती तो आज ये नौबत ना आती शायद, आप केस भी कर सकते थे, आप बड़ा कुछ, आप कानून के मुताबिक हर चीज चल सकते थे और ये चीजें आप कर सकते थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, आपके अंदर ही इतफाकी का ना ना इतफाकी का क्या कहते हैं फुकदान था, एक दूसरे के आप लोग कहते हलाफ थे, आप गैर मुल्की, और फिर आप देखें कि आपका आप सारे आहिस्ता आहिस्ता जो गैर आ गए, अब इसके ऊपर भी कर रहे हैं, ओ ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, ये निकल जाएगी, गल्ला करो सुनो ना दिया, ये यानी कि बैठ के खुद ही बातें, खुद ही मफरूजे, जो कौम मफरूजों में चलती है उसका यही हाल होता है, फैंटेसी मफरूजे शॉर्टकट, ये तो तीन चार चीजें हैं इसमें चलना, तो देखो हालत क्या है इनकी, मैं एज ए कौम बात करूंगा ना, क्या हालत है हमारी पाकिस्तान में, कर्जों में डूबे हुए हैं, 200 बिलियन का कर्जा है हमारे ऊपर, शर्म से मर जाना चाहिए हमें, झूठ सारा दिन झूठ टीवी में बताया जाता है, सारा दिन झूठ बताया जाता है मीडिया पर, झूठ के ऊपर ये हम खड़े हैं, कितनी देर तक खड़े हो जाएंगे।
1: लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी सियासत की तरफ आप बात कर रहे हैं कि जब वोटर सपोर्टर ही खुद करप्ट है तो फिर लीडर को क्यों गिला किया जाए, वोटर सपोर्टर को नहीं पता कि मैं वोट किसको दे रहा हूं।
2: ये बात राजा साहब आपका सवाल बड़ा जबरदस्त कर दिया आपने, ये मैं चाह रहा था आप करें मेरे जेंस से, वोटर और सपोर्टर देखें, वोटर बदबख्त सॉरी को नहीं पता कि मैं क्या बदबख्ती कर रहा हूं, यानी कि मैं किधर वोट दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, यानी कि यार जेन भी दिमाग भी होता है ना, कोई दिमाग भी बनाया हुआ अल्लाह ताला ने, हर एक का दिमाग, हर अल्लाह ताला ने हर एक का दिमाग बनाया हुआ है, ये भी तो कौमें सोचती है ना, ये बैठी हुई है यहाँ भी, तो देखो यहाँ भी बड़ी चीजें होती होंगी, नेगेटिविटी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये अपने अपने मुल्क और अपनी नेशन के लिए ठीक है, ये सिर्फ करते हैं हमारे खिलाफ, फॉरनर के खिलाफ जो अपने जो इनका प्रोपेगेंडा होता है, और वो भी कहीं कहीं जगह वो जायज करते हैं, हमने भी यहाँ आके कौन से कोई तीर मार ली है, क्या कर ली है, चलो ये तो एक दूसरी बहस है, अब मैं वोटर सपोर्टर की बात करूं अपने, यार इनको देखो दिमाग अल्लाह ताला ने दी हुई है, किधर लगे लग जाते हो तुम, कोई यार यहाँ की कोई सियासत पहले पढ़ लो, यहाँ का कोई मताले पता ही कख नहीं कि यहाँ पर ए से लेके जेड तक क्या है, सियासत क्या होती है यहाँ पर, पार्टियां कैसे चलती हैं, काउंसिल कैसे चलता है, आपकी पार्टियों के मेंबर कैसे होते हैं, रेड ब्लॉक क्या है, ब्लू ब्लॉक क्या है, ये ही नहीं पता, ते वोट पान चले है किन्नू राजा साहब नु, की है राजा, और मनु एक ने क्या ही राजा ने वोट पाया, वो यार गल करने वाली शर्म से मर जाना चाहिए, तुम इधर आके भी तुम्हारी वही है सियासत जो पाकिस्तान में तुम करके आए हो, ना पता है ना अगे का पता है, ना अगे का पता है, ना ना तो पिछे का पता है, ना अगा दौड़ते पिछा चौड़, ये तुहाडा हिसाब है, जिथो आए उत्थे भी तुसी एंजी सो इत्थे भी आके तुसी एंजी हो, यार कोई कोई कोई यार काम का काम कोई कोई चज का काम कर लो, जिन्ना कोई सानू कोई कोई हो जाए फखर, अब ये बातें मैं कर रहा हूं ना, इसमें इसमें इसमें बनाएंगे मजाक खड़े होके बाहर, ओ पागल ही हो, इस कोई भी करे, आप करें, कोई भी, कोई आपको दे रहा मत दे रहा है कोई चंगी, कोई दे रहा है मशवरा, कोई यहाँ पर रह रहा है, कोई 60 साल से आए हुए हैं जो उन्होंने सीखा है यहाँ आके, बहुत से लोग यहाँ 60 साल से भी रह रहे हैं ना, 70 साल से भी रह रहे हैं यूरोप में, 80 साल से भी रह रहे हैं, उन्होंने वो सीखा है, जब वो उनसे पूछते हैं, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है इनको इनको कहते हैं बताने के लिए अपना कीमती कोई सिर खपाने का, चलो आपका फोन आ गया, इनको मत भी दे देता बाद में, पहले सुनेंगे, ये चीजें लेने वाली कौम है राजा साहब, चीजें लेती है, चीजें लेगी हर एक से।
1: देखें यहाँ के कानून है, यहाँ के सिस्टम है, लोगों को वजारतें दी, दुनिया में लोग जो है वजीर आजम बने, जमहूरी सिस्टम से बने, वोट दिए, अपना इतने बड़े न्यूयॉर्क के मेयर बने, बर्तानिया के मेयर बने, किसने जमहूरियत ने वोट देने से बने। हमारा वोट देने का तरीका हमारे लीडर की तरफ जाता है, हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करना ये जमहूरी हक है, इसमें कौन सी बुरी बात है, ये जमहूरी हक है, करनी चाहिए, लेकिन कानून कायदे के अंदर करनी चाहिए। यहाँ भी कौमें करती हैं, इत्तेजाज करती हैं, शायद कभी हम लोग अपने मफाद के लिए भी बाहर निकलते हैं।
2: हम लोग जब हमें कोई जाती मफाद हो ना, जाती जाती जिसे हमें कोई फायदा हो रहा हो, जिसे पता हो कि 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे कोई 100% फायदा हो रहा है, जब मुझे श्योर हो गया, गारंटी मिल गई है, फिर मैं दिखाने के लिए बाहर निकलूंगा, बाहर एक एहतजाज करूंगा दिखाने के लिए। आप मेरी इस बात को अभी नहीं समझेंगे, इसको इस बात को समझें जरा, मैं क्या कहने का मतलब है, ये मेरा मतलब है कहने का कि जब मुझे कोई जाती मफाद होगा ना, और मैं उस मुझे उस मफाद की गारंटी मिल जाएगी कि मेरा वो मफाद पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं वो दिखाने के लिए बाहर निकलूंगा, वैसे मैं वैसे बाहर नहीं निकलूंगा, वैसे मैं अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने सिस्टम जो इधर भी सिस्टम चलता ना, यहाँ भी सिस्टम बाज़ का ज्यादा कर जाता है तो लोग निकलते हैं, ये नहीं कि यहाँ तजाज नहीं होता, पेरिस में नहीं होता, लंदन में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, क्या कहते हैं स्पेन, ये लोग नहीं करते, ये जो गोरे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं एहतजाज करते, ये बड़े बड़े एहतजाज करते हैं, बड़े बड़े बड़े, जब इनको पता हो कि इनका सिस्टम, इनकी कोई चीज उनके बरअक्स जा रहा है, या यहाँ पर महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, जॉब्स नहीं है, लोगों को जॉब नहीं हो रही मुहैया, क्योंकि यहाँ स्टेट का काम है, जॉब्स नहीं है तो फिर उसको कम से कम पैसे तो उसको मुहैया किए जाए ना, ताकि वो अपना रोज बसर कर सके, ये लेकिन
1: बात तो है ना ईमानदारी की, चाहे कोई भी
2: मैं इसमें ये बात पूरी कर लूं। अब ये तो हो गया ना इधर का, मेरे मुल्क पाकिस्तान, अगर वहां पर महंगाई है, वो तो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी तनहाइयां तो उतनी नहीं है, वो तो ना होने के बराबर है, और क्या कहते हैं रोजगार नहीं है, बहुत से लोग जो है रोजगार से दूर है, कई लाखों करोड़ों, यहाँ पर आप कानून के दायरे के अंदर रह के एहतजाज बनता है ना इस कौम का, इस बेशरम कौम का, नहीं निकलेगी ये, और ये आईनी है
1: शायद, ये बिजली महंगी है, आपका मेरा मसला एक है, गैस महंगी है मसला एक है, सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी है, कोई भी चीजें महंगाई है, तो सारी चीजें जो है वो सबकी फेलस है। जब हम अपने फेलस मुतालबात के लिए नहीं निकलते, तो मैं किसी लीडर के लिए निकलता हूँ, मैं किसी एक शख्स पीर के लिए बाहर निकलता हूँ, मुझे अपने मफादात का क्यों नहीं पता, मेरी पेंशन कितनी है, दूसरे की पेंशन कितनी है, ये पेंशनें पार्लियामेंट में बढ़ाई जाती हैं, बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, सुबह असम्बली में पेश किए जाते हैं, कौमी असम्बली में पेश किए जाते हैं, कभी इलेक्शन में या यूरोप में मुझे 40 साल हो गए देखते हुए कि 25% लोग जो है वो आखिरी दिन फैसला करते हैं, जब लीडरानों की डिबेट होती है, पार्टी के लीडरान की डिबेट होती है कि हमारा मंशूर क्या, हमने क्या करना है, उस दिन 25% लोग फैसला करते हैं, उससे पहले उन्होंने सुन रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, हमारे मुल्कों में या जहाँ फैसला करने वाले लोग होते हैं वो भी तो अवाम फैसला करती है, वो भी तो लीडर फैसला करते हैं, कभी आपकी याद में लीडरों ने आपस में बैठ कर डिबेट की है और हम आपस में लड़ रहे हैं? जी शायद
2: जी, आपने ये एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा किया है कि जब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है 2 माह पहले या 3 माह पहले, ज्यादातर तो 2 माह पहले, 1-1.5 माह पहले शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीडर जो पार्टियों के लीडर होते हैं आमने सामने उनकी डिबेट भी होती है, जैसे अमेरिका में होती है, जैसे यूरोप के दूसरे ममालिक में होती है, बहुत से मीडिया चैनल्स वो दिखाते हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स का एहतमाम करते हैं, तो उसमें 10 या 8-10 जो पार्टियों के मेंबर बड़े बड़े लीडर हैं जो पार्टियों के, वो खड़े होके उनके लाइव डिबेट की जाती है, लोग बैठे हैं सुनते हैं, इस तरह की डिबेट का आप कह रहे हैं, इस तरह की डिबेट आपके मुल्क में नहीं हो सकती राजा साहब, میرے ملک پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, جس ملک سے میرا تعلق ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جو مرضی آپ کر لیں, جو مرضی آپ کر لیں, یہ کیونکہ آپ کا سسٹم کے اندر آپ کا, کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ یہ نہیں کرنے دے گا, نہ وہ ہونے دے گا, آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں اس کے اندر انوالو نہیں ہونے دیں گے. ہاں یہ چیز ناممکن نہیں ہے, ممکن ہر چیز ہے, لیکن اس وقت دور دور تک یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. یہ ڈبیٹ ہوگی تو لوگوں کو
1: سکتی ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو اب ابھی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے, ایک دو دن کی بات ہے, ڈیمونسٹریشن کی بات ہو رہی تھی, یہ سارے آپس میں ملے ہیں نا, گئے ہیں اسپیکر کے آفس میں گئے ہیں, تو یہ سارے معاملات اگر حل کر سکتے ہیں, یہ خود نہیں کرنا چاہتے. جس طرح آپ نے دلیل دی, آپ کی دلیل ٹھیک ہے, لیکن یہ خود بندہ ہی کہتے ہیں میری نیت ہی خراب ہوگی تو میں دوسرے پہ الزام دوں گا.
2: آپ سویڈن کے اسپیکر کی بات کر رہے ہیں؟
1: سویڈن کے اسپیکر کی بھی بات کروں, پاکستان کے اسپیکر کی بھی بات کر
2: رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں اس کی جو سیاسی استحکام ٹھیک نہ ہو, اور اس ملک میں بنیادی کسی چیز کی غلط رکھ دی جائے. میں نے ابھی شروع میں یہی بات کی تھی کہ آپ کے ملک سے لوگ نکل گئے ہیں کافی زیادہ, 50-60 لاکھ, لیکن بہت زیادہ بڑی بات ہوتی ہے صاحب, اور وہ سیاسی استحکام ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں, وہ ڈاؤن ڈول ہے. اور آج 2027 آ گیا ہے, 4-5 سال ہونے لگے ہیں گورنمنٹ کے بنے ہوئے آئے ہوئے, کوئی ایک کام بتا دیں. چلے میں اس پہ بحث نہیں کرتا, آپ وہ بات کر رہے تھے اسپیکر کی, آپ بات کر رہے تھے سر, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیاد ہی نہیں ہے جس ملک میں, جو رکھتے ہیں سلے بنیاد رکھتے ہیں, اٹ پٹ سے شروع کرتے ہیں, وہی ٹھیک نہیں ہے. اوپر بلڈنگ کیسے ٹھیک ہوگی, وہ تو ایسی ہی رہے گی, وہ تو ٹھیک نہیں رہے گی. جو مرضی کر لیں, بس آپ اس کو تکا لگا رہے ہیں, اس کو زبردستی اس کو اپنے رکھا ہوا ہے اوپر, اس بنیاد کے اوپر زبردستی کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے اس کو, بس ہارا دیا ہوا ہے آپ نے, جو ہوتے ہیں شتیر گارڈر کے ساتھ جو کہتے ہیں پنجابی چ, ان کے ساتھ آپ نے اس بلڈنگ کو اشتہار دیا. کتنی دیر تک ہے یار, 10-5 سال, اور وہ بھی بیوقوف سارے بن, اس میں سارے بیوقوف بن رہے ہیں. ہاں جن کچھ لوگوں کا, جن کچھ خاندانوں کا یا کچھ ٹیک ہولڈروں کا لگا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں وہ چیک لگا ہوا ہے, وہ جناب خربوں میں کھیل رہے ہیں, اور آپ کا خربوں ڈالروں میں کھیل رہے ہیں.
1: بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاید دیکھیں پچھلے دنوں جب چودھری شجاعت صاحب کا تھا, انہوں نے کہا کہ جو باہر جو پارٹی ہیں ان کو کوئی عہدے نہیں دینے چاہیے, یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں, تو کیا یہ جتنی سیاسی تنظیمات ہیں جماعت ہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں, ان کو عہدے دیے جاتے ہیں, تو یہاں کی سیاست میں یہ کیوں عہدے لیتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کسی طرح کا فیصلہ ہونا چاہیے؟
2: ایک تو راجا صاحب میں یہ عہدوں سے بڑا تنگ ہوں, کیا مجھے کبھی آپ نے دیکھا, میں نے کبھی آج کتنی دیر ہو گئی ہے سیاست کرتے ہوئے, انالائز بھی کرتا ہوں, تجزیہ بھی دیتا ہوں, کبھی دیکھا ہے میں نے کبھی کسی عہدے کی طرف گیا ہوں؟ راجا صاحب یہ جو عہدہ یار, عہدے کے پیچھے یہ لوگ بھاگتے ہیں جیسے ایسے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کتنے سالوں سے یوں نا, اور اس میں دیکھتا ہوں, میں نے اس میں کہتا ہوں یہ بھی تھا, یعنی کہ عہدہ مل, وہ یار یہ سب عہدہ سب جھوٹ ہے. نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ بھی چلی ہے, اس کو لے کے وہ گھر فریم بنا کے سجا لیتے ہیں, یہ سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. آپ یہ ساسے کم تری نہیں ہے, صرف یہ دکھانا ہے, میں دکھانا ہے پینڈ نو اپنے, دیکھو میں کیا ہوں, ساسے کم تری بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے,
1: شاید ہمارے پاس دو منٹ ہے آج ٹائم, تھوڑا حل بتائیں.
2: حل آپ کو ہر بار بتاتے ہیں, حل یہی ہے کہ جس دن آپ نے جھوٹ بولنا, عوام نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا پوری, اور آپ کے سسٹروں اور آپ کے سیاستدانوں نے, پاکستان کے پہلے بات کروں گا, آپ کا ملک میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساتھ ہی, آپ کا ملک ایک سمت پر چل پڑے گا جس دن آپ نے جھوٹ بولنا کر دیا بند, جھوٹ لیکن جس دن اور وہی جس دن آپ کے سیاستدانوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا, سچ بولنا شروع کر دیا, اس دن آپ کا ملک درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا. یہی حال ہے اس کا, بس یہ اس کی شروعات ہے.
1: آخری بات, کیا بین لگا دینا چاہیے دنیا میں کوئی سیاسی پارٹی جو پاکستانی نہیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو؟
2: گورنمنٹ آف پاکستان کے تو اوپر خود پہلے بین لگنا چاہیے, وہ خود ہی غیرانی ہے, गवर्नमेंट अब पंक्शन कैसे बैन लगा सकती
1: है? तो बात होगी ना इसकी, वो तो ये बात हो सकती है ना, ये तो कर सकते हैं
2: पहले, वो तो नहीं नहीं वो तो किसी के ऊपर बैन नहीं लगा सकते बेचारे, वो इतने जोगे ही नहीं है, बैन उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है ना एनर्जी है, वो तो खुद किसी वो कहते हैं वो कानों के वो जो होते हैं छोटे छोटे कान है उसके ऊपर खड़े हैं, वो नीचे से पीछे से हटा दिए खत्म, वो क्या बैन उन्होंने लगाना किसी के ऊपर? मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि बुनियाद ही ठीक नहीं है, वो जब बुनियाद ही ठीक नहीं हो जो चोर दरवाजे से खड़े हैं आगे, वो क्या आपके लिए करेंगे राजा सब, आपके लिए काम करेंगे या मेरे लिए पक्षन के लिए? तो नहीं कर सकते।
1: ओवरसीज तो देख रहे हैं, दुनिया की मॉडर्न तरीन जमहूरियत देख रहे हैं, ममालक की तरक्की देख रहे हैं, ये भी तो ठीक हो जाए ना।
2: देखिए जी अब ओवरसीज जो है ना इधर पूरे यूरोप में और अमेरिका में कनाडा में, अमेरिका कनाडा में तो चौथी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन इधर भी है, चौथी जनरेशन इधर भी शुरू होने वाली है यूरोप में। आपको रिजल्ट डेनमार्क में भी मिल गया था, आपको रिजल्ट यूरोप में भी, इधर भी मिल गया, स्वीडन में भी, पाकिस्तानियों की बात मैं कर रहा हूँ, तीसरी जनरेशन इधर भी शुरू होने वाली है, अभी तीसरी यहाँ शुरू नहीं हुई इधर क्या कहते हैं स्वीडन में, डेनमार्क में तो ऑब्वियसली शुरू हो गई है ना, वहां तो उनकी उनकी शादियां भी हुई हैं, उन्होंने वोट डाले हैं ना, वही कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं सारा कुछ। तो ये जब तीसरी जनरेशन खत्म होएगी, चौथी जब इधर ही आएगी तीसरी और उधर चौथी शुरू हो जाएगी तीसरी, तो आपके हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो सियासी हैं उधर के, मैं मेरा ये दावा है। जब तक हम जो पीछे जो है पिछला दौर जो है अदवार जो है वो फिर उसको लोग भूल जाएंगे, वही आके आपकी जो है ना आपके वो सिस्टम के अंदर वो लोग जो वोट देंगे वो सिस्टम में लोग आएंगे। अभी इसके ऊपर टाइम है, एज आप कह सकते हैं 5 साल 10 साल मैक्सिमम 10 साल मिनिमम 5 साल जो अगला इलेक्शन होगा।
1: तो ये सोशल मीडिया का वायरस कैसे ठीक होगा?
2: नहीं, सोशल मीडिया तो एक अवाम है ना, सोशल मीडिया तो जो वो दुनिया की अवाम है वो इसके अंदर होती है और अपने अपनी राय देती है, क्योंकि लोग मीडिया को डेनमार्क की मीडिया को भी इतना इतना लोग देखते हैं जितना डेनमार्क की सोशल मीडिया को देखते हैं। हर मुल्क का सोशल मीडिया है का काम कर रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है अवाम लिख रही है, अवाम बता रही है, अवाम कह रही है, अवाम ये जो हर जो चीज जो मीडिया छुपाता है वो अवाम ले आती है उसके ऊपर, ये जी चीज हुई है।
1: शायद चलते चलते मैं आपसे पूछ लूं, एजेंडे में शामिल तो नहीं था, तो आपका स्वीडन में फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ, कितने पैसे इकट्ठे हुए?
2: राजा साहब जिस दिन फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ था उसके अगले रोज ही जो हमारी टीम मेंबर था वो शदीद बीमार हो गया, जब उसको उनका डायग्नोज हुआ हॉस्पिटल में तो वो ट्यूमर की तशखीस हुई, तो वो 2 हफ्ते से अभी वो 1.5 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वो जब शुरू हो जाएगा उनका ट्रीटमेंट तो हम 1 या 1.5 हफ्ते तक या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जो है ना सारा जो मवाद है जो हर चीज है उसकी फिर हम बाकायदा उसको अनाउंस करेंगे कि क्या है।
1: ये फिर आपने निजाम देख लिया?
2: किस चीज का निजाम?
1: चेक एंड बैलेंस का?
2: नहीं वो तो ये शो का था ना कि आप बात कर रहे हैं, वो तो सारे
1: पैसे होल्ड कर रहा हूं, फिर एक ही बंदे के पूछे घूम रही है ना हर चीज।
2: नहीं नहीं वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका तो वो तो हुआ, उसके पीछे हम लग गए सारे, लेकिन टीम ने जो पैसा था वो तो सारा हमारा 99% वो कैश नहीं था, वो तो ऑनलाइन था सारा, वो तो सारा चला गया उधर ही सारा 99% क्या कहते हैं वो ऑनलाइन था, बल्कि 99.9% ऑनलाइन था।
1: तो कितना
2: वो तो सारा चला गया राजेश, मैं इसके वो भी नहीं बता सकता जब तक मैं इसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं मीडिया एडवाइजर हूँ उसका, उस टीम का नाम है, उस टीम का बिल वास्ता मेरा वही उनका तल्लुक है, लेकिन चलो शोकत हम का हिस्सा हूँ एक, लेकिन टीम का वो इस तरह नहीं जो ये काम कर रहे हैं, कोई मीडिया एडवाइजर है, कोई स्पोक्स पर्सन है, वो मैं नहीं हूँ, वही आपको बता सकते हैं।
1: चलिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे जो अस्पताल में, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके लिए भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा रابطہ होगा
2: जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाजरीन ये थे शायद जो के बात कर रहे थे, हमारा किससे मुतफिक होना जरूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहे अपनी राय देना चाहे उसके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ सिटी काउंसिल के कोपरागन पार्लियामेंट के जो है, जो होती है ये पार्लियामेंट ही होती है, छोटी सी पार्लियामेंट होती है कम्यून की जो होती है, ये कोपरागन की होती है, शायद इसको स्टेटस मिला हुआ है। ये नौजवान है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन है जो कोपरागन कम्यून के पार्लियामेंटेरियन है, तो जिसे सिटी काउंसिलर कहते हैं। अशम, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी अंकल, बहुत शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम।
1: अशम, हम जरा तारुफ कराते हैं, तो छोटे हैं तो बड़े छोटे में बात करते वक्त थोड़ी सी जो है ना वो रवानगी जो है वो खत्म हो जाती है। तो क्या खबरें हैं, बजट पास हो गया, टाउन हॉल में क्या शोर पड़ा हुआ है?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, बहुत शुक्रिया। जब से हमारा एंट्रेंस हुआ है सिटी काउंसिल में, आप यकीन करें लोग शौक में ही रहे हैं, क्योंकि हमने अपना पोजीशन एक काफ़ी स्ट्रांग हद तक हमने अपना रखा है। एंड पहले तो सिकंदर भाई ने काफ़ी जोर से हमारे क्या में आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, अब मैं आ गया हूँ, तो फिर आप यकीन करें बहुत ज़्यादा क्या चर्चे हो रहे हैं सिटी काउंसिल में। एंड

0: हम तो लगे हुए हैं काम पे सिंस डे वन। अभी तो हमारा बजट का सेकंड फेज क्या अभी मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन हमने मेक श्योर किया है कि जिन लॉ बिल से हम सख्त क्या मैं डिस्टेंस लेते हैं, उनको हमने हाईलाइट किया और कहा कि ये सही नहीं है और इसको हमें चेंज लेके आना चाहिए। तो अंकल आप देखें, आप लोगों ने हमें वोट दिए हैं, आप लोगों के लिए अगर हम काम ना करें और हम अपने क्या हम जो प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर हम काम करें तो फायदा नहीं है। इवन दो के आप यकीन करें, जब वोटिंग आई है पार्किंग के बारे में, मैं वहाँ अकेला ही था ऑलमोस्ट कई क्या हम लॉ बिल्स में जहाँ मैंने कहा कि नहीं, कोपेनहेगन में हमने मेक श्योर करना है कि पार्किंग के हालात बेहतर हो। और ये आप लोगों ने क्या मैं संडे एंड वीकेंड का पार्किंग का आपने हटाया है फ्री पार्किंग, इसको आपको री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमने क्या मैं वोट किया था फ्री पार्किंग के लिए वीकेंड्स में एंड कंसायो से, उन्हें बाकी की बाकी पार्टियों ने कहा कि ये हम री इन्फोर्स नहीं करेंगे, तो वो इस बार नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा भी कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश यही होगा कि हम ऐसे क्या हालात बनाएं जहाँ जो लोग कोपेनहेगन के हैं वो आसानी से गाड़ी भी चला सके, पार्क भी कर सके एंड उनके हालात थोड़ा सा हम इतना सख्त ना कराएं।
1: देखिए अशम, बजट तो पास हो जाएगा तो उन्होंने रखे हुए हैं 77 मिलियन जो रखे हुए हैं पार्किंग के लिए या के खूबसूरती के लिए, सब्जाजात के लिए रखे हुए हैं, ये बजट क्या काम करेगा?
0: अंकल अभी बात यह है कि कोशिश तो उनकी है कि हर जगह वो क्या हम कवर करें, हमारी ऑब्वियसली कोई और फोकसेस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको वेव नज़र आ रहा है इस्लामोफोबिया का, सख्ती का, ये आपको लोकली भी क्या मैं नज़र आ रहा है कि इस पे यहाँ भी एक फैक्ट है। अब आप ये देखें, ऐसे तीन बिल्स थे जहां हमने एसफ़ी खान कहा है कि हम सख्ती से यहां से क्या मैं इसके मुखालफ है। एक तो ये है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनिंग है, उन्होंने कहा है कि क्या हम चाहते हैं कि स्विमिंग क्लासेस हो जहां वो खवातीनों का अपना अलहदा हो, मर्दों का अपना अलहदा हो। और इस पे बहुत ज़्यादा क्या हम कहानियाँ चर्चा हुई हैं, खासकर जो रेसिस्ट पॉलिटिशियंस है। लेकिन अब हमारे बजट में ये आ गया बात कि उन्होंने इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है और उन्होंने मेक श्योर करना है कि जो ये जेंडर डिवाइडेड स्विमिंग है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि वो सब मिक्सड हो गए साथ साथ करें। क्योंकि इनके हिसाब से जब आप खवातीनों का अलग करते हो, मर्दों का अलग करते हो, तो ये एक इस्लाम मतलब इस्लाम आप डाल रहे हो डेनिश कम्युनिटी में। वैसे तो ऐसे है नहीं, ये एक कॉम्फर्ट की बात होती है, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों के लिए जितनी हम सख्ती कर सकें उतना ही बेहतर है। एक तो ये बिल था, दूसरा बिल ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हम पैसे देते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल एक मस्जिद है, उन्होंने अपनी एक फाइनिंग बनाई है जहां वो कि हम कम्युनिटी से पैसे भी लेते हैं, कि इनको हमने सबको इन्वेस्टिगेट करना है और हमने देखना कि किस चीज के लिए अपना पैसे यूज
1: क्या ये
0: करते हैं।
1: मसाजिद को पैसे मिल रहे हैं उनकी फाइनिंग को?
0: कोई मस्जिद हैं जिनको पैसे मिल रहे हैं कम्यून से? अब उन्होंने एक मेंशन किया है एग्जाम्पल की, मुझे लगता है नॉर्वेस्ट में एक बॉस्नियन मस्जिद है, डेनिश बॉस्नियन मस्जिद, कि इनको पैसे मिलते हैं और वो चाहते हैं कि अब हम इन्वेस्टिगेट करें कि किस किस चीज़ पे ये पैसे लगा रहे हैं और इनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी बजट का ही हिस्सा था कि हमने अब पैसे लगाने हैं मसाजिद को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें हमने भी क्या हम इसके खिलाफ क्या हम वोट डाला है।
1: नहीं तो मसाजिद में एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके मैच हो रहे हैं। मैं भी कल एक मैच में गया हुआ था, ये मस्जिद वाले बच्चे खेल रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, और ये ब्रॉन्डवी में था, ब्रॉन्डवी के जो फुटबॉल ग्राउंड में मैच हुआ था।
0: और अंकल होने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को एक्टिव कराते हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्या मैं कि वो भी मसाजिद की जो सोसाइटी जो बनी है कि उसका एक हिस्सा लें। एंड ऑब्वियसली जब आप ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो कम्यून आपको ऑफर करता है कि हम आपको पैसे देना चाह रहे हैं, तो आप और से और ऐसे एक्टिविटी कराएं। लेकिन
1: तो
0: अब
1: अशम,
0: वो
1: आप लोगों को स्पेशली फ्री ग्रोने को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? मीडिया इन पे लिखता है और सिटी काउंसिल में भी आपकी डिबेट होती है, बहस होती है, और ठीक है ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन किसी को टारगेट तो नहीं करना चाहिए।
0: नहीं, मेरे हिसाब से मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हमें इतना ज़्यादा टारगेट क्यों कर रहे हैं। हाँ ये है कि हम क्या मैं हमारे पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो बाकी पार्टियों के पे है अंकल। अगर हम मानते हैं कि ऑब्वियसली लोगों को अपने राइट्स मिलने चाहिए, और अगर आप क्या मैं अपना इस्लाम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली अलाउड होना चाहिए। बाकी पार्टियों में वो सेम किस्म की क्या मैं फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए वो डर गए कि यार ऐसे एक पार्टी आ गए, अगर ये पॉपुलर हो जाए तो फिर क्या से क्या हो सकता है।
1: सवाल ये पैदा होता है अशम के, ये इस्लाम इस्लाम की बात करते हैं, जिन ममालिक से ये लोग आए वहाँ इस्लाम की नाम की चीज़ नहीं है, तो डैनिशों का तो कानून ही इस्लामी मुल्क ही नहीं है, तो यहाँ इस्लाम की बात क्यों कानून नाफज की करते हैं?
0: अंकल बात ये नहीं कि इस्लाम को हो, हिंदुइज्म हो, या जो भी रिलीजन हो, बात ये कि आपको वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि जिस भी मजहब की तरफ आप आना चाह रहे हैं कि आप अलाउड हो वो प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन बात अंकल एक तो ये मजहब की बात, दूसरी बात ये भी है, अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल आया है कि क्या मैं फ्री कॉन ने डेनमार्क हिस्ट्री बनाया है क्योंकि उन्होंने क्या मैं सिंगबिया के लोगों को एक्टिवेट कराया जाके पोलिंग स्टेशन में जाके अपने वोट डालने के लिए। हिस्टोरिकली सिंगबिया में 1/3 पॉपुलेशन मतलब 33% वोट डालते हैं, लेकिन पिछली कम्युनिटी इलेक्शन में ये क्या हम साबित आया कि वो 33% 46% पे आ गया था,
1: ये
0: और
1: अच्छी
0: ज्यादा
1: बात है।
0: ज्यादा बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि जितने लोग डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा लेंगे उतना ही क्या हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को वो कभी कभार ये कहते हैं कि अच्छा वोट डाल के क्या फायदा होगा, कौन सा डिफरेंस आएगा, अच्छा वेदर आज अच्छा नहीं है तो मैं अगले इलेक्शन में अपना वोट डालूंगा, और यही मसला है क्योंकि फिर आपको वो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें,
1: लेकिन
0: तो
1: अशम,
0: ये
1: जो
0: ऐसे इश्यूज
1: अखबारात
0: हैं।
1: की खबरें चलती रहती हैं, आपकी मेरे ख्याल इस जुमरात को फिर वोटिंग हो रही है, ये वाकई एजेंडे में बात है या नहीं है?
0: बिल्कुल अंकल वोटिंग हो रही है, लेकिन ये फिजूल से ऐसे अजीब अजीब किस्म की वोटिंग हो रही है और ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब आप ये भी देखिए कि एक पूरा केस चले सिकंदर भाई के बारे में, उनका एड्रेस एंड जो भी है वो आप लोगों के सामने ही है कि क्या क्या हुआ है। अब जो राइट विंग पार्टीज उनमें से दो तीन लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये अपना अपने पैसे वापस दें। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि अगर आपने एक साल से काम
1: कौन कौन
0: किया
1: सी
0: है।
1: पार्टियां ये डिमांड करती हैं?
0: ये मेरे ख्याल से अभी मुझे सीधे याद नहीं है वो
1: क्या जिन्होंने फौसले
0: आपको
1: दिया उनको पार्टी स्टूट भी करती है? उनकी बैकग्राउंड पे खड़ी है उनकी पार्टी?
0: जी देखें, अभी जो फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है तेंस फॉल के बच्ची कंसर्वेटिव एंड सोशल डेमोक्रेट्स काफी स्प्लिट है क्योंकि आधे से ज्यादा कह रहे कि आप बाज आ जाएं और दूसरा हाफ कह रहा है कि नहीं नहीं हमने इनसे पैसे निकालने। इवन दो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि राइटफुली अगर आपने काम किया है तो फिर आपको पैसे क्या मैं आपको मिलेंगे। और अंकल अगर वो मैं आपको जनरली बात बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको क्या मैं लॉ को तोड़ के वो कहते हैं ठीक है सिकंदर ने कि हम पैसे वापस देने हैं, तो वो पैसे फिर किसको मिलेंगे? वो फिर मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट सुप्लियंट हूं, और अगर पैसे मुझे मिलेंगे तो मैं वो पैसे वापस सिकंदर को दे दूंगा क्योंकि तो अंकल ये इन्होंने एक सर्कस ही बनाया है, इसमें कोई क्या सेंस नहीं है। और मेरा यही एक क्या अजीब सी सोच है कि अगर आप ऐसे पॉलिटिशियन कोपमेकन सिटी असेंबली में आपकी सीट है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये बच्चों वाले हरकतें इसमें कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ आके पॉलिटिक्स करें और ये फजूल से ड्रामे आप अपने पास ही छोड़ें।
1: ये मेच्योर पुराने सियासतदान कहते हैं या ये नए नए आए हैं अपने कम्यून में?
0: अंकल एक पॉलिटिशियन है सोशल डेमोक्रेट्स के, वो उनका बैकग्राउंड है कुर्दिश लास एसलन। आप देखें वो सिंस मुझे लगता है 2015 से पॉलिटिक्स में, इवन वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर एंड शोर वही कर रहे हैं। अब अगर आप उनका फेसबुक क्या पेज देखें, पिछले जो जितने भी 45 उसकी पोस्ट रही हैं वो या तो क्या फ्री खान के बारे में रही हैं, मुसलमानों के बारे में रही हैं, या क्या रेसिज्म, मतलब उसका कोई और एजेंडा है ही नहीं इसके अलावा। तो
1: वो
0: हम
1: खुद भी
0: ऐसे ऐसे
1: मुसलमान
0: पॉलिटिक्स से
1: हैं?
0: फाइट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान है अंकल, क्योंकि जितना वो प्रोपगेंडा दार रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मुझे
1: तो
0: तो
1: भी
0: नहीं
1: अगर
0: लगता।
1: उनको
0: लेकिन हमारा
1: कानून इजाजत देता है या जमहूरियत इजाजत देती है या टाउन हॉल इजाजत देता है, तो ये फिर जमहूरी हक है हर किसी को इस्तेमाल करने का।
0: हाँ ऑब्वियसली, लेकिन अंकल ये होता है बात कि क्या आप किस तरीके से अपना पोलिटिकल करियर क्या मैं चलाना चाह रहे हो। अब ये है कि ऐसे कोई पॉलिटिशियंस हैं जो झूठ पे कि हम अपना करियर चला रहे हैं। एक के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कि हम एक तस्वीर ली है किसी बंदे के घर पे के सामने, जहां उन्होंने कलमा लिखा था दरवाजे वो बालकनी पे, उन्होंने एक साइन लिखा था कलमे के साथ। अब इस पॉलिटिशियन ने इस तस्वीर ली है और कहा है कि ये आइसिस के सपोर्टर है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ये क्लेम किया, लेकिन उस फैमिली का एड्रेस भी लिखा है फेसबुक पे, जहां 10,000-12,000 लोगों ने लाइक भी किया ये पोस्ट। और फिर बाद में पता चला कि ये कोई आइसिस का कोई पोस्ट नहीं था, ये एक्चुअली उन्होंने अपना कलमा लिखा था। तो अंकल ऐसे ऐसे कि हम टूल्स यूज किए
1: तो
0: जा
1: आप
0: रहे हैं
1: लोगों ने
0: हमारे
1: अपना
0: खिलाफ
1: क्या, आप
0: प्रोपेगेंडा
1: लोगों ने
0: के।
1: क्या फोसवा, आपने क्या इसकी जो बंदोबस्त किया हुआ पार एज ए पार्टी?
0: अंकल हमारी तो कोशिश ये है कि हम हाईलाइट करें ऐसे इश्यूज की, ये कैसे हो सकता है आप ऐसा पॉलिटिशियन, आपका तो काम होना चाहिए कि सबको इकट्ठे रखने के लिए, स्प्रेड करने के लिए नहीं। और अंकल अब आप देखें हमारे खिलाफ इतने सारे क्लेम्स आए हैं, मेरे पे ये आ रहा है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि अरेंज मैरिज एंड फोर्स मैरिज दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
1: राइट
0: आपको पता है कि हमारे कल्चर में है कि लोग करते हैं और लोग प्रेफर भी करते हैं अक्सर। और मैं तो नहीं ये कहूंगा कि मैं डिक्टेट करना चाहूंगा कि आपकी लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर कोई बंदा प्रेफर करेगा कि उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो और वो अरेंज मैरिज के प्रोसीजर को लेके चले, तो फिर गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए।
1: क्या गवर्नमेंट का आइन पढ़ा जाता है वहाँ पे ये आइन में तो ये लिखा हुआ है, तो आप लोग क्यों तनकीद करते हैं या आप लोग सही जवाब नहीं देते?
0: लिखा तो है लेकिन लोग तो पता नहीं अंकल अपने अपने क्या हम बिहेवियर करते हैं।
1: चलें एक और खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आपके पुराने साथी तकीर हसन बुखारी शाह साहब, उन्होंने वेंस्ट्रा ज्वाइन कर ली है।
0: माशाल्लाह अच्छी बात है। मेरी यही क्या मैं लोगों को यही प्रमोट करता हूँ कि आप बेशक क्या मैं जो सी भी पार्टी में हिस्सा लें, आप बस पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकली। और अंकल तुकीशा का ये है कि उनका बहुत सारा हिस्ट्री रहा है विंस्टर के साथ, तो ऑब्वियस चॉइस होगी कि अगर वो फ्री कॉन छोड़ के वो फिर अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे, तो मैं तो खुश हूँ। इंशाल्लाह मैं ये होप करता हूँ कि वो विंस्टर में थोड़ा सा तब्दीली लेके आए।
1: तो क्या आपको भी लोग प्रेस कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि आप ही अपना मैंडेट लेके चले जाएं?
0: लोग कहते तो हैं और लोगों ने क्या मैं सजेस्ट भी किया है कि ये एक साल ही नहीं रुकेगा क्या मैं फ्री कॉन में इलेक्शन के बाद, तो ऐसे ऐसे बातें मैंने सुनी है। अब माशाल्लाह से 1 साल हो गया है मैं यही हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैं इस पहले से भी ज़्यादा श्योर हूँ कि मैंने फ्री कॉन में ही रहना है। क्योंकि अंकल आपके सामने है, अगर हम कुछ अपने प्रिंसिपल के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है पॉलिटिक्स में आने के लिए। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि पार्किंग के हालात आप थोड़ा सा बेहतर करा लें, या ये नहीं कह सकता कि जो हमारे बहनें हैं उनको क्या परमिशन मिलना चाहिए कि वो अपने सेपरेट स्विमिंग क्लासेस करें, तो फिर अंकल फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फिर पॉलिटिक्स में क्यों आया हूँ।
1: डेफिनेट आपकी पार्टी का मंशूर है, अपनी पार्टी के मंशूर पे आप अमल कर रहे हैं, ये आपका लीगल राइट है।
0: बिल्कुल अंकल हमारे राइट्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आपके हम साथ देंगे, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और अंकल आप लोग आप सब लोगों के सामने हैं जिस तरीके से उन्होंने क्या मैं सिकंदर भाई को अटैक किया है, अब रिसेंट टाइम्स में मुझे भी अटैक कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल शो करने के लिए है कि अगर आप ऐसा मिनोरिटी आते हैं सियासत में तो फिर आपके लिए मुश्किलात डे वन से होते हैं। तो हमारी
1: तो ये
0: कोशिश ये है
1: देखिए
0: कि
1: ना,
0: हम
1: वैसे तो आप मिन्नतें करते रहते हैं, आपको मीडिया जगह नहीं देता, इस तरह आपको रोज मीडिया में जगह मिल रही है।
0: अंकल सिंस 7th September मेरा नाम 220 आर्टिकल्स में मेंशन हुआ है, मतलब दिन के 30 आर्टिकल्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो ये इतना एक्सट्रीम इन्होंने किया है, लेकिन बार हमने क्या मैं हिम्मत नहीं छोड़ना। स्ट्रांग रहना है, और इंशाल्लाह ये हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं हम।
1: देखिए आप काम करेंगे यहाँ तो काम करने की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप अपना आज़ादी से बोल सकते हैं, आज़ादी से कह सकते हैं। आप कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में के अंदर बैठे होते हैं, आपको पूरा हक है वहाँ बोलने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि अंकल हमने ना सिर्फ क्या, हमने कहा कि इसमें बजट में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद आई हैं उनको हमने सपोर्ट भी किया है अंकल। ये 2027 में हम सॉरी 2027 में हमने बहुत हाईली इन्वेस्ट किया है डिमेंशिया एरिया में, जिन लोगों को डिमेंशिया की बीमारी है, तो हम ना सिर्फ उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको वो काम से थोड़ा सा छुट्टी ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली मेंबर को डिमेंशिया है उनके साथ वो टाइम दें। हमने पार्किंग हमने फ्री तो नहीं करवाया, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग स्पॉट्स बनवा रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डाल रहे हैं, क्या मैं एजुकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कोपेनहेगन आने वाले टाइम में ज़्यादा खूबसूरत होगा और ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। अभी हम मेट्रो पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये जो सिटी रिंग है मेट्रो का, कि एक मेट्रो स्टेशन सेल तक भी आ जाए, तो जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो। तो हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं अंकल। अभी मैं
1: लेकिन
0: नया
1: अभी
0: नया आया हूँ
1: तो
0: तो
1: अभी जो बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए जो टीका लगवाना है, जिसे जुकाम का टीका कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस का टीका लगाते हैं, तो पहले तो अपने
0: जी
1: अपने डॉक्टर लगाते थे, अब मुख्तलिफ जगह बना दी हैं, डिस्टर्ब कर दिया हर चीज़ को।
0: जी अंकल। और इसका आपने अच्छा किया ये इश्यू रेज कर रहे हैं। ये मुझे मेरे हिसाब से ये कम्यून का क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रीजन का है, लेकिन वहाँ मुझे पता है कि जो हमारे भाई हैं इरफान गानी, वो बहुत क्या मैं काम करे इस चीज़ में, और वो काफ़ी वेल एजुकेटेड भी है। तो मैं श्योर हूँ कि इस इशू को मैं उनको मैं रेज करता हूँ उनके साथ, आप भी करें, और फिर हम इस पर हम इंशाल्लाह कोई बेहतरी लेके आएंगे।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे बजट के मुतल्लिक, कि ये बजट कब तक अनाउंस हो जाएगा, पास हो जाएगा?
0: अंकल मेरे हिसाब से ये पास हो गया है, जो लास्ट मीटिंग में हम थे,
1: जी
0: हमारे थोड़े से चीज़ें थे जो हम निकालना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो वोटिंग पावर
1: तो
0: नहीं
1: क्या
0: था।
1: बजट में आ गया दांतों का इलाज मुफ्त हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी?
0: ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं होगा, अभी तक हम वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, लेकिन दांतों का हमने ये करवाया कि जो एल्डरली है, मतलब जो बुढ़े हैं, उनके लिए वो हम फ्री करवा रहे हैं। तो वहाँ आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा, वो जो स्पेसिफिक्स है वो मैं इंशाल्लाह आपको लेके आ जाऊँगा। लेकिन जी दांतों का इलाज जो लोग कोपेनहेगन में रहते हैं उनके लिए फ्री होगा।
1: क्या कहा, एक बार दोबारा रिपीट करें, कहाँ रहते हैं?
0: जो कोपेनहेगन कम्यून के जो रहने वाले हैं,
1: राइट
0: अगर आपका अब वो एज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो अगर आप एल्डरली हो, मतलब आप थोड़े से आपकी उम्र ज़्यादा हो, तो आपके लिए इंशाल्लाह 2027 में दांतों का इलाज फ्री होगा
1: चलें जी, ये भी
0: जी
1: नई गाड़ी आ जाएगी, चला कर देखते हैं कैसे चलती है।
0: इंशाल्लाह
1: तो आखिर में कुछ कहना चाहें अपने सामाइन को, नाज़रीन को?
0: जी। मैं बस ये कहूँगा कि शुक्रिया सबका सपोर्ट का, एंड इंशाल्लाह आप बस सपोर्ट करते रहें। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें मेरे साथ, क्योंकि टाइम्स थोड़े से टफ है जर्नलिस्ट के साथ, और काम नया नया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं 1-2 महीना आप मुझे दे दें, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं काम में, तो फिर मैं पूरे के कम्युनिटी के जो सरबरा हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा, और फिर हम वहां बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर मेरी कोशिश ये होगी कि हम जितना रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों को इश्यूज सुनूं उन पे मैं फिर काम करूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह मैं सबसे मिलूंगा, सबसे बातचीत करूंगा जी।
1: अशम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे नौजवान सिटी काउंसलर कोपेनहेगन कम्यून से अशम आगा, उनकी बातें आपने सुनी। ये नौजवान हैं, बात करते हैं, डेफिनेट आप ये सीख भी रहे हैं, तजुर्बा भी हासिल कर रहे हैं, और साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, अपने मौक़ों पर डटे हुए हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो इनके आइन में, पार्टी के आइन में लिखा हुआ, उस पर ये काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं फ्लेक्सीबल होना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। जिस तरह आपने सुबह इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, उनमें एक हमारे स्पेशल मेहमान भी हैं जो कि कभी कभार जो है अपना टाइम निकालते हैं और अल्लाह आज़रा पर रोशनी डालते हैं, थिंक टैंक भी हैं ये भी, जो बरतानिया से वहाँ काम भी अपना करते हैं और उसके साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, वीलॉग भी करते हैं और लिखते भी रहते हैं और खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं। मेरी मुराद है शाह जंजुआ साहब। जंजुआ साहब, एक बार फिर आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी वालेकुम अस्सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया, और आपके जितने मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम। जंजुआ साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मैं तो समझ रहा था कि शायद आप दर्रे में पाकिस्तान गए हुए हैं।
3: मैं अगर आप ये सोचें कि आपने दिलो दिमाग के साथ, तो वाकयातन मैं पार्लियामेंट की रादारियों में बैठा था, लेकिन जो मैंने बात मैंने दो दिन पहले कही है बिल्कुल ऐन वही हुई है, और वो ये थी कि मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे, और नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पर है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उन्हें खंगालना चाहिए कि वो हैं कौन। अगर आप जो है वो अपना मुकदमा किसी ऐसे बंदे को देते हैं कि जिसका अपना जो है वो क्लेम हो कि ये जमीन उसकी है, तो वो जमीन आपको तो नहीं देगा, वो तो खुद अपने पास रखेगा और आपका मुकदमा वो जानबूझ के जो है वो हरा देगा। तो पीटीआई के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है,
1: पीटीआई के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है, जबकि किबला हजूर की दुआएं भी साथ थी।
3: ये बड़ी एक जो है वो बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली और इनकलाब का जो फैसला है ये खाली इमरान खान का नहीं था, ये इमरान खान और उनके कजन जो है वो कैनेडा वाले अलामा बाहिरुल कादरी, उनका था, दोनों का था, और दोनों ने मिलके जो है वो पीटीबी की इमारत पे हमला किया, फिर मिराजुल कुरान के लोग जो है वो उस इमारत के अंदर घुस गए, और फिर ताहिरुल कादरी साहब ने जो है वो मुबारक दी। ये सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, सारे इस वीडियो को कादरी साहब की आवाज को सुन चुके हैं, लेकिन और कब्रें भी जो पार्लियामेंट के सामने खोदी थी वो भी कादरी साहब ने खोदी थी, इमरान खान ने तो कब्रें नहीं खोदी, वो बेचारा तो दिन को आता था दो तीन घंटे के लिए, वहां पे रक्सो सरूद की महफिल होती, गाना होता, इमरान खान साहब जो है वो अपनी खुश गपियां लगाते और चले जाते। लेकिन इस तब्दीली को और इस इनकलाब को करबला के साथ जो जोड़ने वाली शख्सियत थी वो तो उनके कजन थे, उन्होंने जो है वो ऐसा रंग भरा के पूरी पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि ये मारका करबला है, और इस मारका करबला से जो आज पीठ फेर के भाग जाएगा वो यजीदी है, और जो यहाँ पे जम के अपना खून बहा देगा वो हुसैनी होगा। लेकिन फिर वक्त ने देखा कि लामा साहब जो है वो खुद यजीदी काफले में शामिल हो गए, और वो पीठ फेर के जो है वो ऐसे भागे कि आज 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया वो पाकिस्तान जाने का नाम ही नहीं लेते, और इमरान खान बेचारा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और इमरान खान ऐसा जेल की सलाखों के पीछे गया कि उसने जिस किसी को भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया वो पीटीआई से उसका कोई तलक नहीं था। तो ये तो खान साहब का एक वीएन है कि उन्होंने महमूद अचकज़ई को, जिसका वो खुद फन बनाते थे, उसे जो है वो सेनेट के अंदर अपना नुमाइंदा बना दिया और पार्लियामेंट के अंदर अपना नुमाइंदा बना दिया, फिर अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो उन्हें अपना नुमाइंदा बना दिया, फिर जो है वो एक वकील को ले आए और वो उसको सेनेट का मेंबर मुंतखब कर दिया। तो ये दो राजे और एक महमूद अचकज़ई, ये टोटल इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले हैं, और इन तीनों का मफाद इस बात में है कि इमरान जब तक हो बल्कि मरते दम तक वो जेल में रहे, ताकि ये जो है ये पीटीआई के ऊपर कब्जा करके पीटीआई को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते रहे और ओहदे सारे इनके पास हो, प्रिविलेज इनके पास हो। तो अगर इमरान खान खुद बाहर आता है तो वो तो एक लड़े में इनकी बैग पे जो है वो मुक्का मार के, मैं ठुड्डा तो नहीं मारता, मैं पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, कि वो इनकी पीठ पे मुक्का मार के इन्हें उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये लोग तो पीटीआई से थे ही नहीं, और पीटीआई से जब ये है नहीं है तो ये पीटीआई के वफादार में क्यों मुज़ाकरात करेंगे। और इन्होंने जितने भी आज तक मुज़ाकरात किए उनका एंड गोल यही था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए, और यूं ही हम जो है वो नाम का धरना देंगे, चंद बंदे जो है वो आ जाएंगे, कुछ लोग जो है वो इधर उधर हुकूमत के ऊपर अंडे फेंकेंगे, हुकूमत के ऊपर पुलिस अहकानों को डंडे मारेंगे और जख्मी करेंगे, गोलियां चलाएंगे, लेकिन उनके जो पसे पर्दा जो मकासद है वो ये है कि पीटीआई का या इमरान खान का जो मफाद है वो इसमें है कि हकूमत दहशत गर्दों के सामने सर नगू हो, हकूमत जो है वो दहशत गर्दों के सामने, इंतहा पसंदों के सामने, अफगानी जितने दहशत गर्द हैं, जितने जो है वो गैर कानूनी इतना गजीन है, उनके सामने घुटने टेक दे। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये टोटल है कि पीटीआई की बका गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानी दहशत गर्दों के साथ भाईचारे में है, और पाकिस्तान की बका उनको रगड़ा लगाने में और दहशत गर्दों का किला कमा करने में है। सोहेल अफरीदी की हुकूमत वहां पे इसलिए कायम है कि उसके जितने मुहाफिज हैं वो सारे के सारे इस तरह के लोग हैं, दहशत गर्द, अफगानी पनागजीन, कातल, मफरूर। और किसी भी वज़ीर-ए-आला का काम ये होता है कि वो अपने सूबे के अंदर जो तरक्याती काम होते हैं, अवामी मसाइल होते हैं, उसके ऊपर उसकी तवज्जो होती है। लेकिन सोहेल अफरीदी कहता है कि मेरा मैंडेट तो सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान के लिए धरना दूं, तोड़ फोड़ करूं। तो ये तो वज़ीर-ए-आला का विजन है। अब अगर वो इससे हटता है और वो कहता है कि जी नहीं, मैं अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, तो इमरान खान अगले ही किसी दिन किसी मुलाकाती को कहेगा कि सोहेल अफरीदी को खत्म करके किसी और को वज़ीर आला बना दे। तो पार्टी तो इस तरह चल रही है, यानी टोटल इस पार्टी का जो मफाद है या इस पार्टी की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, मार धाड़, लूट फूट और इस तरह की जो है वो सिचुएशन बना के रखना है कि पता चले कि गोया पाकिस्तान जो है वो एक नाकाम रियासत है। इमरान खान, आपको याद है कि जब वो वज़ीर आज़म से तो वो कहते थे कि आज पाकिस्तान बैंकरप्ट हुआ कि कल हुआ, तो वो बार बार आए रोज जो है वो पूरी दुनिया को इसकी नवीद देते थे, लेकिन वो असल में किसी और को खुश कर रहे होते थे। और पीटीआई का आज भी जो मतमा नजर है वो पाकिस्तान नहीं है, हालांकि अगर इनके अंदर कुछ थोड़ा सारा भी सियासी शऊर होता तो ये पीपल्स पार्टी से सबक सीखते। पीपल्स पार्टी जिसकी क्यादत को फांसी हुई, लेकिन उन्होंने पीटीआई को सेपरेट रखा, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो उनसे गलतियां हुई उन केसेस की पैरवी को सेपरेट रखा, तो आज उस पार्टी जो है वो फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और उसी पार्टी का जो नुमाइंदा है या चेयरमैन है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। लेकिन पीटीआई का तरीकाकार ये है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। होना तो ये चाहिए कि पीटीआई का कोई मंशूर होता जो है नहीं है, कोई दस्तूर होता जो है नहीं है, या पीटीआई का मतमा नजर ये होता कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन वो बेहतरी लाना उनका मकसूद नहीं है। उनका मकसूद सिर्फ ये है कि दुनिया की किसी भी कीमत पे एक लखंडरे क्रिकेटर को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाना चाहिए, और उसके पास एक ही उसके पोर्टफोलियो में है, वो है जो है वो कैंसर हॉस्पिटल। याद रखें कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तानियों के पैसों से बना, उसमें हर सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, हर एक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उन सब ने पैसा दिया, तो वो हॉस्पिटल कायम हुआ। लेकिन उसका क्रेडिट एक जमात ले, एक शख्स ले, ये नाजायज है, ये हराम है, ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर इसी इमरान खान के की पैरवी में जो है उसके कजन ने भी जो है वो अपने हर चैरिटीज का क्रेडिट खुद लिया, हालांकि इन्हें चैरिटी कहना ही नहीं चाहिए, ये अपनी अपनी पार्टी और फैमिली की प्रमोशन के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो मजहब के नाम पे, जिसमें वो अवामी फलाह बहबूद के नाम के ऊपर जो है वो चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट खुद अपने आप को देते हैं और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो सियासी तगड़ो करते हैं। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी है, किसी महजब माशरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
1: जी जुआ साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया, लेकिन इमरान खान की पार्टी में जो उनका वर्कर है, जो उनसे मोहब्बत करता है, वो अपने वज़ीर आज़म से मोहब्बत करता है, अपने पार्टी लीडर से मोहब्बत करता है, तो क्या इमरान खान पर कल्ट्स ने कब्जा किया हुआ या इमरान खान खुद एक कल्ट्स हैं?
3: इमरान खान या पीटीआई ये कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, इसे पार्टी नहीं कहना चाहिए। ये इमरान खान का एक फैन क्लब है। इस फैन क्लब के अंदर जो लोग आते हैं उनकी मोहब्बत इमरान खान से होती है, पाकिस्तान से नहीं होती। जो सियासी पार्टियां किसी मुल्क के अंदर बनती हैं उन सियासी पार्टियों का एक मंशूर होता है और एक दस्तूर होता है, और वो मंशूर और दस्तूर मुल्की फलाह बहबूद के लिए होता है। अब उसमें ये नहीं होता कि हमने किसी फलाह बंदे को वजीर आजम बनाना है या फलाह बंदे को हमने सदर बनाना है, वो मुल्की मफादात के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उसे सियासी पार्टी पार्टी कहा जाता है। लेकिन ये किसी एक शख्स को प्रमोट करके उसे फलां फलां या सारे ओहदे दिलाना, ये उसके फैन क्लब के लोगों का ऐसा होता है। और उस फैन क्लब के ऊपर भी अब एक और क्लब ने कब्जा कर लिया, वो है जो है वो सोशल मीडिया क्लब। अब इमरान खान का जो असल फैन क्लब था वो पीछे हो गया है। उस फैन क्लब के लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, वो लोग तो कहते हैं कि भाई अगर इमरान खान से जुर्म हुआ है तो इमरान खान वो अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ जाएगा, आप उसका मुकदमा लड़ो, अगर आपके पास उस मुकदमे के एंटी दलायल है तो वो जाके अदालतों के अंदर दो। लेकिन वो दलायल अदालतों के अंदर तो देते नहीं है, अदालत के अंदर बार बार इल्तवा मांगा जाता है और सारी तवज्जो ये होती है कि हमने किसी सूरत जो है वो इमरान खान को जेल में नहीं रहने देना। बेशक इमरान खान ने हजारों क्राइम किया, वो कहते भी है कि है, वो नहीं कहते कि इमरान ने क्राइम नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद इमरान खान साहब हमारे लिए महात्मा है। तो ये जो सोच है ये सोच अच्छी नहीं है, ये मुस्बत सोच नहीं है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर ऐसी सोच को पज़ीराई नहीं दी जा सकती। और अब सोने पे सुहागा ये है कि उसके ऊपर भी जो यूट्यूबर ने कब्जा कर लिया है, ये जो फेसबुक के लोगों ने सोशल मीडिया के लोगों ने कब्जा कर लिया है, और टिकटॉकर ने कब्जा कर लिया, और टिकटॉकर अपना प्रोग्राम बेचने के लिए अपनी व्यूवरशिप के लिए ऐसे ऐसे जो है वो शगुफे छोड़ते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। रात को एक बंदे ने कहा कि इमरान खान सुबह फजर की नमाज के वक्त जो है वो अडियाला जेल से बाहर होंगे और उनकी गाड़ी जो है वो अपने घर की तरफ रवाना दवा होगी, और फिर चंद दिनों के बाद जो है वो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता और उनके इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो जो बंदा भी इस तरह का ब्लंडर करता है, जो भी इस तरह की झूठी खबरें देता है पीटीआई के या इमरान खान के जो फैन क्लब है, वो सारे के सारे उसका प्रोग्राम देखना शुरू हो जाते हैं, उसे धड़ाधड़ लाइक मिलते हैं और वो अपना पैसा कमाता है। फिर उसे जो है वो इससे जो है वो मजीद हौसला अफजाई होती है और वो अगले दिन इससे बड़ा झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलना, तवातर के साथ झूठ बोलना और एक दूसरे से बढ़ के झूठ बोलना, ये जो इमरान खान का नया सोशल मीडिया फैन क्लब है, इसने जो है इसका ये समझे कि अपने अपनी एक जिम्मेदारी ले रखी है कि हमने जो है वो पीटीआई के जो सादा लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आज भी जो है वो चाहते थे कि यार दूसरी दो पार्टियों से जो काम नहीं हुए वो हम करेंगे, तो उन्हें वरगला के जो है वो इस्तेमाल कर दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और मुज़ाकरात जहाँ पे हो रहे होते हैं वहां पे, यहाँ पे सेनेट के अंदर, हर जगह से जो है वो यूट्यूबर खड़े होकर अपना लाइव शो कर रहे होते हैं, और उस लाइव शो में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो यूट्यूबर जैसे मतीउल्लाह जान सबको दे ले तो वो खड़ा होके जो है वो डिक्टेशन दे रहा होता है कि पीटीआई को असल में ये कहना चाहिए, पीटीआई की क़यादत को यूं खड़ा स्टैंड लेना चाहिए, पीटीआई को हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात करने चाहिए, ये जो है वो मुतालबात रखने चाहिए। आप देखें कि मीडिया का काम ये नहीं होता वो कि वो किसी पार्टी को डिक्टेशन दे, वो पार्टी ने जो पॉलिसी ली है, जो भी उसकी लाइन है, वो अवाम के सामने लेके आता है, लेकिन वो उन्हें वरगलाता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बहती है और इस शायद हमारे जो पार्टी के सरबराहान है वो भी अब इसके आदि हो गए हैं और उन्हें हर वक्त जो है वो अपने हक में तारीफें सुनना जो है वो पसंद है। वो जेल में बैठे हुए भी ये सोचने पर आमादा नहीं है कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से आज हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इमरान खान का साहब की भी जो शख्सियत है वो भी इसी का असीर हो चुकी है।
1: तो जंजुआ साहब, वे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने केसेस का जो है वो फेस करना चाहिए। आपकी बात सही है कि पार्टी अपनी जगह है लेकिन केसेस अपनी जगह है, केसेस लड़े, वकला उनके पास मौजूद है, टीम उनके पास मौजूद है, अपनी केसेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया मीडिया के एंकर हैं, अपना क्या नाम है, वो अक्सर आप भी उनको सुनते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 9 मई का वाकया हुआ, ये जनरल फैज साहब और इमरान खान की प्लानिंग थी, अगर स्टेट के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसका भी तो कोई कानून होगा।
3: आप जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ पे, मुझे आप किसी भी शख्स के अंदर जो बड़े बड़े जो है वो ताकतवर बनते हैं और बड़े बहादुर बनते हैं, उन्हें बोले कि आप वज़ीर आज़म को गाली दिखा, एक गाली निकाल के मुझे दिखा दो, आप उस सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हैं आप उन्हें ये कह के दिखा दो अपने वीडियो व्लॉग के अंदर कि ये करप्ट है, और फिर देखो आपका अंजाम क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मस्करापन इतना आम हो चुका है कि हमारी आवाम जो है वो इसके अलावा कोई खबर सुनने को तैयार नहीं है कि उन्हें ये खबर मिले कि मुर्गी ने चूंग मार के जाद को नीचे गिरा दिया, या ये खबर हो कि राह चलते हुए रागीर ने कुत्ते को काट लिया। वो जो अच्छी खबर होती है वो नहीं सुनती, उन्हें जो है वो ऐसी खबर सुनने की आदी हो गई है हमारी आवाम के, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और फिर वही जाके लोग जो है वो नाई की दुकान पे या किसी मिनाजुल कुरान के सेंटर पे जाके इस तरह की लायानी बातें करते हैं और वहां पे अपना एक नया फैन क्लब बनाते हैं, और फिर वो वहां पे बैठे हुए लोग इस शख्स को अपना जो है वो एक रहनुमा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये कर रहे होते हैं, और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना है। लेकिन राजा साहब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बदमाशियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उनका अंजाम ये होगा कि आइंदा जब ये लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो इनके वीजे नहीं लगेंगे, ये जब ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे तो इन्हें जो है वो हमारे जितने स्वार्थ खाने हैं उनका वीजा रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि आप पर्सनली आए, और जब ये पर्सनली वीडियो बेल के ऊपर आएंगे तो वहां पे वो आइडेंटिफाई होंगे कि ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को गाड़ियां देते थे, फील्ड मार्शल को गाड़ियां देते थे। तो दहशतगर्दी के जुर्म की वजह से इनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक होंगे, और फिर इन्हें समझ आएगी कि हमने पाकिस्तान जाना था, अपने अपने वालदैन को मिलना था, या अपनी जायदाद अपनी जमीनों को का बंटवारा करना था, तो हमारे लिए क्या क्या हम सीटें खड़ी हुई हैं। चले ये लोग तो ऐसे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इनकी वजह से एक आम आदमी जो है वो बुरे तरीके से मुतासर होगा, और उसके लिए भी अपने मुल्क में जाना जो है वो मुश्किल होगा। और अगर वहां पे इसका दहशतगर्दी में नाम है तो उस जब इसका डोमिसाइल आएगा कि ये बंदा दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये जहाँ पे या इनके बच्चे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप देखें ओसामा बिन लादेन के बेटा अगर आपकी किसी कंपनी में आता है और जॉब अप्लाई करता है तो आप नहीं देंगे, आपको पता है कि यार ये तो एक दहशतगर्द का बेटा है और ये बंदा तो जो है उसने तो पूरी दुनिया को वक्ता डाल दिया था। तो इसी तरह ये लोग जो है इनके बारे में भी इसी तरह का गुमान होगा कि यार इन लोगों से पनाह अच्छी, इन लोगों को बेहतर है कि अपने माशरे से, अपने कल्चर से, अपनी कंपनी से और अपने खानदान से, अपने आप से, इन्हें अपने इलाके से दूर ही रखा जाए। तो ये अगर इन लोगों को इस चीज का इदराक नहीं है तो जब इदराक होगा उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा और इन्हें इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
1: जिंजुआ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप थिंक टैंक है, एनालाइज करते हैं, तो ये जो हर 5-7 साल बाद जो एक स्टेज बनाया जाता है उस पर ये तमाशा लगाया जाता है, उससे पहले इंग्लैंड में मुलाकातें की जाती हैं और उसके बाद जो अमल दरामद शुरू हो जाता है, उसके चौधरी सरवर साहब भी एक्टिव हो जाते हैं और दूसरे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, आपके किबला हजूर भी एक्टिव हो जाते हैं, चूँकि वो सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने करीब से देखी हैं।
3: अभी आप देखें क्यूम निजामी ने जो जिसका किसी दौर में वो पीपल पार्टी के दौर में या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वजीर भी रहा है, लेकिन बढ़ापा है, अब उसका पीपल पार्टी के अंदर कोई उसे पूछता नहीं है, कोई उसे मीडिया के अंदर पूछता नहीं है, तो उसका भी दिल करता है कि मेरा भी किसी अखबार में नाम हो, चंद लोग मुझसे भी मोहब्बत करने वाले हो, चंद लोगों को पता हो कि मैं भी जो है वो सबका लीडर था। तो अब उसने एक नया बतंगड़ छोड़ा है कि ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आ रहे हैं, और मैं आपको चैलेंज देता हूं आज के प्रोग्राम में कि ताहिरुल कादरी कभी जिंदा पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसकी जब भी जाएगी मूर्ति जाएगी, और इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते ताहिरुल कादरी साहब। हालांकि वहां पे उन्होंने जो महल बनाया, उनका दिल करता है मैं वो सऊदी हुकूमत से खूब सऊदी शहजादों से ज्यादा खूबसूरत महल है जो ताहिरुल कादरी साहब ने बनाया है, उसका एक बेड इतने इतने का है कि आप यहाँ पे जो है वो 60-70 हजार पाउंड की या डॉलर की गाड़ी बेचे तो उसका उस माल के अंदर जो बेड रखा हुआ है, जो डाइनिंग टेबल है, वो एक आप खरीद सकते हैं। तो इतना उसके ऊपर लक्जोरियस काम हुआ है, इतना उसके ऊपर जो है वो करोड़ों के हिसाब से चित्रकारी हुई है, दुनिया के कई कई ममालिक से उसकी टाइलें गई हैं, डेकोरेशन गई है, तो दिल उनका भी करता है कि मैं वहां पे जाऊं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं वहां पे गया तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, अगर हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया तो मेरा तो वो सारा जो भूत है शैखुल इस्लाम होने का वो तो निकल जाएगा। तो लिहाजा चाहते या ना चाहते हुए मैं यूरोप में ही रहूं। तो आप देखें वो कनाडा से 20 घंटे की फ्लाइट पकड़ के बर्तानिया में आते हैं, तो बर्तानिया के अंदर रहते हैं, यूरोप में जाते हैं, यहाँ पे सारी अय्याशी होती है, पूरा कुंबा जो है वो फैमिली हॉलीडे करता है। लेकिन यहाँ से वो 5 या 6 घंटे की फ्लाइट लेके अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं जाते। यहाँ से वो फ्लाइट लेके मिलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शामिल होना भी गुवारा नहीं करते। यहाँ से वो 6-7 घंटे की फ्लाइट लेके आप खुद अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, जो उन्होंने अपना मकबरा बनाया है, जो अल मारूफ गोशाए दरूद है, उसे भी देखने नहीं जाते, और यहीं से वापस जाते हैं और फिर टेलीफोन के ऊपर खिताब करते हैं। तो ये कितनी ज्यादती है। वहां पे उनके मदा, वहां पे फैन बैठे हैं कि क्यों हजूर आपने तो कहा था कि 90 की दहाई में दुनिया भर में मुस्तफ़ी इंकलाब आ चुका होगा। तो वो मुस्तफ़ी इंकलाब पाकिस्तान में तो नहीं आया, लेकिन उनकी जात में आ गया, उनके खानदान में आ गया। और आप देख सकते हैं कि 90 की दहाई में कादरी साहब की जो दाढ़ी है वो 8 इंच थी, और जो है उनका रहन सहन बिल्कुल एक आम आदमी की तरह था, बल्कि उनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे। और आज वो खरबपति हैं। आज उनका वो जो लिबास रात को एक दफा पहनते हैं वो दोबारा दूसरी रात, अगली रात को भी नहीं पहनते। जो कपड़े वो आज पहनते हैं वो दोबारा नहीं पहनते। जो शूज उनके पास एक है जो आज होते हैं वो अगले दिन नहीं पहनते। वो कादरी साहब के बेटे की आपने तस्वीर मेरे साथ देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई थी कि मेरे साथ उनका बेटा खड़ा है, ये असल की बात कर रहा हूँ। उसके एक पाँव में चप्पल है, हवाई चप्पल है, जिसे वो कहते थे बाटा की चप्पल, और दूसरे में जो है वो पेशावरी खेड़ी है। तो ये इनकी हालत होती थी। और आज वो बंदा जो है वो बंदे से हाथ बाद में मिलाता है और 10 टिशू से जाली पसीना साफ करता है, अपने हाथ साफ करता है कि मुझे जो है वो कई लोगों के जरासीम ना लग जाए। तो उनको उठने बैठने के ऊपर 60-60-70 हजार पाउंड के सेशन करवाए जाते हैं कि जब आपने अपने गरीब गुरबे या डोनेशन देने वालों से मिलना है तो उस वक्त आपने कैसे मिलना है, जब आपने अमीर लोगों से मिलना है तो उस वक्त कैसे मिलना है, जब कोई बड़ा फंड देने वाला होगा तो उसका आपने इस्तकबाल कैसे करना है, और जब छोटे लोग जो सिर्फ आपकी पोस्टें शेयर करते हैं जब आपने उनसे मिलना है तो किस हकारत से उनकी तरफ देखना था कि वो सारी जिंदगी इसी इंतजार में रहे कि किबला ने एयरपोर्ट से निकलते हुए मुस्कुरा के तेरी तरफ देखा था या मेरी तरफ देखा था। और फिर जो है वो गाड़ी में बैठ के हाथ ला के चले गए थे, और फिर जो है ये लोग जो है वो अपने अपने रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा के 2-3 घंटे की फ्लाइट लेके वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये तो इन लोगों का हाल है। ऐसे छिछोरों से अगर आप इनकलाब की उम्मीद लगा के रखें, तब्दीली की उम्मीद लगा के रखें, तो तब्दीली नहीं आने वाली। मुझे आज भी कादरी साहब की ये बात जो है वो मेरे कानों में रस घोलती है, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान वो ऐसा शख्स है कि ये तो पाकिस्तान में काउंसलर बनने का अहल नहीं था, और उनका गिले ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में ये है कि मैं जिसको काउंसलर बनने का अहल नहीं समझता था, आपने उसे वजीर आजम बना दिया, और मेरे साथ आपने झूठे वादे किए, मुझसे लॉन्ग मार्च करवाए और पैसे दे के मुझे वो तनख्वाह दिया, और आपने कुछ भी नहीं दिया। तो ये एक तलख हकीकत है। इसका जितना जल्दी जल्दी इदराक हमारी कौम को होगा उतना ही उसका भला होगा। वरना ये है कि आज ये लोग कादरी साहब के फैन हैं और पैसा सारा ही उनके ऊपर खर्चते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास अपने घर की मॉर्गेज अदा करने के पैसे नहीं है। ऐसे लोग भी जानता हूं जो अपनी मिसिज को एक जो है वो 10 पाउंड भी जो है वो हफ्ते के नहीं देते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि उनके घर के अंदर जो है वो लड़ाइयां होती रहती हैं कि ये अपने बच्चों को कुछ नहीं देता, लेकिन वही शख्स जब कादरी साहब आते हैं तो 5-5, 6-6 पाउंड का खर्चा करके नए कपड़े पहन के उधर जाके बैठा होता है और वहां पे जो है वो डोनेशन दे रहा होता है। ये जहनी परागंदगी है, यही गुलामाना जहनीयत है। वरना अगर आप सोचें तो हमें ये मौलवी बताते हैं ना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैमंद लगे कपड़े पहनते थे, और यही बताते लोगों ने हमें बताया कि बाहर से एक वफद आया और वो इस तलाश में था कि हमने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलना है, और रास्ते में उसने देखा कि चट्टान के ऊपर सर रख के एक शख्स लेटा है और उससे वो पूछ रहे हैं कि उमर फारूक कौन सा है, उमर फारूक से हमने मिलना है। और उसने कहा कि आप जाए वहां पे उसका दरबार है। तो जब वो वहां दरबार में पहुंचे तो देखा वही शख्स बैठा हुआ है, तो वो हैरान हो गए कि ये तो वही शख्स है जिससे हमने रास्ता पूछा था। آج مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کس مولوی کا، کس شیخ الاسلام کا رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ کس کے کپڑے پہمند لگے ہیں؟ کس کے گھر میں جو ہے وہ فاقے ہوتے ہیں؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا تو ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ ہم تو جس غوث العظم، سیدنا غوث العظم کا نام لے کے ہم جو ہے وہ 11ویں شریف اور اس طرح کے ختم جو ہے وہ کروانے چاہیے، مگر ان کے ختم اور درود جو ہے وہ روزے سے ہوتے تھے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور ہم جو ہے وہ بریانیاں بناتے ہیں، بریانی کی دونی دیتے ہیں اور رنگ برنگی کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو علماء نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اسی طرح کے جو آج خود بنے ہوئے علماء ہیں، شیخ الاسلام ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، جن کا رہن سہن کھرب پتی لوگوں جیسا ہے، بڑے بڑے امیر بادشاہوں جیسا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے نئی نسل اسلام سے متنفر ہو رہی ہے، وہ اسلامی کلچر سے متنفر ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن بڑا سادہ تھا، ہمیں ایک بھی مولوی دکھا دے، ایک پیر دکھا دے، ایک کوئی مذہبی ایسا بندہ دکھا دے جس کے آج کے دور میں کپڑے جو ہے وہ پیمند لگے ہوں، جس کا رہنا سہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع میں ہو۔ ان کے پاس خربوں کی گاڑیاں ہیں، خربوں کا پروٹوکول ہے، جب یہ چلتے ہیں تو 40 بندے آگے ہوتے ہیں، 40 بندے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو ایک ہی اونٹ ہے۔ کیا صحابہ اکرام ساتھ نہیں تھے؟ تھے۔ کیا وہاں پہ استقبال کرنے والے نہیں تھے؟ نہیں تھے، سب کچھ تھا، مگر اس کے اوپر باری باری کبھی غلام اونٹ کے اوپر سواری کرتا ہے، کبھی آقا سواری کرتے ہیں، اور جب مدینہ شریف میں داخلہ ہوتا ہے تو غلام اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہمارا پروٹوکول ہوگا اور جو ہے وہ سارے لوگ آگے پیچھے ہوں گے اور اس طرح کا ایک تماشا لگا ہوگا جیسے یہ مولویوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے، نہ انہیں اسلام سے کوئی ہمدردی ہے، انہیں صرف اور صرف ہمدردی یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کھرب پتی ہوں، وہ عیاشیاں کریں اور عوام کے پیسوں سے، اور عوام پیسے دے چیریٹی کے نام پہ، اور اس کا جو ہے وہ کریڈٹ یہ لوگ خود لیتے ہیں کہ فلاں مولوی نے، فلاں پیر نے، فلاں شیخ الاسلام نے، دیکھیں کیا بنا دیا بھائی، کیا خاک بنا دی ہے، کیا یہ پیسے اس نے اپنی طرف سے کھینچے ہیں؟ کیا آج تک مجھے کسی ایک پیر کا، کسی ایک مولوی کا، کسی ایک شیخ الاسلام کا مجھے جو ہے وہ ٹیکس ریکارڈ نکال کے دکھائے کہ یہ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے، اس کی انکم کتنی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے دکھا دے کہ چلے، میں باقی مولویوں کی بات بعد میں کروں گا، مجھے آج تک کوئی مناجی دکھا دے کہ طاہر القادری کا بزنس کیا ہے، طاہر القادری کی انکم کیا ہے، طاہر القادری کے بچوں کا بزنس کیا ہے، کیا آج بھی وہ اسکولوں کے بسے بیچ کے یہ کھرب پتی ہو کے یاچیاں کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب، آج کے پروگرام کی وساطت سے میں ڈنمارک میں، ناروے میں، جہاں جہاں یہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے، فرانس میں، میں چیلنج کرتا ہوں، بلکہ وہ ہمارے راجہ صاحب جو جیلم سے ہیں، دینا سے ہیں، جو آج کل میں ناجر قرآن کے جو ہے وہ بڑے عہدیدار ہیں، بڑی محبت ہے انہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے بتا دیں کہ طاہر القادری کا کاروبار کیا ہے، طاہر القادری کے بچوں کا روزگار کیا ہے، اور وہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، اور وہ بزنس ہے کہاں پہ، انہیں مجھے ان کے بزنس کے ٹیکس کے گوشوارے دکھا دیں۔ آئی چیلنج یو، نو باڈی ول ایکسیپٹ دس چیلنج۔
1: شاہ جنجوا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن شاہ جنجوا صاحب، اکثر آپ کپڑوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک دن پہنتے ہیں، دوسرے دن نہیں پہنتے، کیا وہ کپڑے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ پہنے نہیں جا سکتے؟
3: نہیں، ان کے ٹھیکے ہیں، بڑے بڑے جو ڈیزائنر کمپنیاں ان کے ساتھ ٹھیکے ہیں۔ میں اور آپ لوگ اگر ہمیں بڑا ہی جو ہمارے پاس جو ہے وہ شہنشاہی آئے گی، ہم بڑے خوش ہوں گے، تو ہم کسی نیکس پہ چلے جائیں گے، کسی پرنسپل شاپ پہ چلے جائیں گے، کسی اچھی دکان پہ جائیں گے اور وہاں پہ 100 پاؤنڈ کا کوئی شوز لے لیں گے، وہاں پہ کوئی 100-150 پاؤنڈ کا کوئی جو ہے وہ سوٹ لے لیں گے، لیکن یہ ایسی شاپوں کے نزدیک سے گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کے جوڑے، ان کا لباس، ان کی بہوؤں کے لباس آپ دیکھ لیں، وہ کپڑے ایسی ڈیزائنر شاپس کے اوپر بنتے ہیں کہ جہاں سے کوئی عام بندہ اس کی उस रास्ते से नहीं गुजर सकता, वो इतने इतने महंगे होते हैं, फिर उनके साथ पर्स बनते हैं, बैग बनते हैं, उसी मैचिंग उनके साथ जो है वो जैकेट्स बनती हैं, कोट बनते हैं, शूज लिए जाते हैं, और फिर उन कंपनियों के साथ इनका मुआहदा होता है कि ये एक वक्त की बात नहीं है, आपने ये बनाते जाना है और इन्होंने खरीदते जाना है। आप जरा देखें इनका लिबास, ये आपके पास सोशल मीडिया आप डालें, बाजी गजाला डाल लें, कादरी साहब की बाकी बहुएं डाल लें, फिर आप इनका लिबास दे। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क़े हलाल दे और उससे ये आपकी चीजें खरीदें। लेकिन आप कादरी साहब के कपड़े देख लें, जब वो आते हैं यहाँ पे तो वो जितने बदबूदार कपड़े होते हैं, जितने पुराने कपड़े होते हैं, जितने कपड़े उन्हें छोटे हो जाते हैं या वो उनका साइज अच्छा नहीं रहता, वो किसी एक भी जो है वो जाहिल अपने मरीज को उसके गले में पहना देते हैं, बेशक वो उसे पूरा हो या ना हो, तो वो बंदा भी जो है वो कादरी साहब का कोट पहन के खुश हो जाता है, बेशक वो उसकी उसे जो है वो बिल्कुल उसका साइज ना हो, और वो देख रहा हो कि यार इसके अंदर से बदबू आ रही है, लेकिन वो क्या करेगा, अगर वो इस तरह की कोई जो है वो नाराजगी का इजहार करेगा तो जितने कादरी साहब के बाकी फैन है वो तो कहेंगे कि यार ये ना शुक्र है, इसको तो चाहिए कि कादरी साहब जो है वो अगर खांसी करें, अगर उन्हें फ्लू लगा हुआ और वो अपना नाक साफ करके भी अगर उसके ऊपर टिश्यू के ऊपर रख के दे तो उसका फर्ज यह बनता है कि वो उठा के जाए और अपनी वाइफ के चेहरे पे मले के देखे ये किबला की खुशबू आई है। तो इस तरह की जहनीत है जो मिराजुल कुरान के अंदर है, वरना जो है वो हकीकत आजकल सब पे यहाँ है, और हकीकत सिर्फ ये है कि ये नाकाम लोग हैं, ये फेल्ड है, ये सिर्फ फैमिली प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये अगर किसी जगह पे जॉब करें तो ये शायद इस काबिल नहीं है कि इन्हें किसी शॉप के ऊपर जॉब भी मिले। तो ये बाप की बनाई हुई चैरिटी से जो इन्होंने मदरसे बनाए हैं वहां पे कोई चेयरमैन लगा हुआ है, कोई प्रेजिडेंट लगा हुआ है, और किसी का पता नहीं एक एक बच्चे के पास 10-10 अहदे हैं। किबला हजूर ने भी तो तकसीम की हुई है ना, उन्होंने तकसीम की है कि मसलन जो पाकिस्तान से इनकम आएगी या दुबई से जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से इनकम आएगी वो बड़े बेटे के लिए, जो यूरोप से आएगी वो छोटे बेटे के लिए, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो जो है वो पोते के लिए। तो इस तरह उन्होंने भी अपनी बादशाह के जो है वो इस तरह जो है वो उसकी हदबंदी की हुई है और उसे जो है वो तकसीम किया हुआ है अपनी इनकम को। जी राय साहब,
1: युवा साहब, आपने बहुत सारी बातों का अहाता किया, लेकिन एक बात बार बार जहन में आती है, लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं, और आप फिर भी उसके बावजूद आप किबला हुजूर कहते हैं, आपको इतनी मोहब्बत है उनसे, शायद युवा साहब वो 65 साल वाली उम्र का क्या बना, क्या वो कैंसिल होगी या प्रोजेक्ट?
3: वो जो किबला को आनी थी, देखे जब तक किबला हुजूर की जो एज है वो 63 ईयर थी, तो उस वक्त तक जो है वो फिर भी वो बहुत सारी चीजों का हया करते थे। उनका जो तरीकाकार था वो ये था, चलो 10 झूठ बोले हैं तो एक आध सच भी बोल दो। तो जो ही उम्र उनकी जो है वो 63 वर्ष से ऊपर हुई है, और वो जो उनके ऊपर मौत आनी थी जिसकी उन्हें गारंटी दी गई थी कि 63 वर्ष में या 64 वर्ष में आएगी, वो नहीं आई, तो उस किबला जो है वो उसके बाद जो है वो इतने मुजोर हो गए कि अब वो इस्लामी कानून को, इस्लामी सकाफत को, अपने किसी वादे का उन्हें कोई हया नहीं है। देखे ना, एक तरफ आप सोशल, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, आप उठाएं जरा फेसबुक और फेसबुक के ऊपर आप लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी, तो आपको नजर आएगा कि उन ताहिरुल कादरी जो है वो हर चीज की मजम्मत कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे सियासी हैं, पाकिस्तान के हालात की उन्हें इतनी खबर है कि जितनी किसी परिंदे को भी नहीं होती, जितनी हुकूमतें वक्त को नहीं होती। लेकिन उसी ताहिरुल कादरी को फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, ईरान और अमेरिका के अंदर हो रहा है, उसका पता ही नहीं है। आपने कभी बयान नहीं सुना होगा अब ताहिरुल कादरी के मुंह से कि ये जो इतना फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर तबाही हुई है, मैं इसकी भी मजम्मत करूं। किसी मिनाजी के मुंह से आपने उसकी मजम्मत नहीं देखी होगी। आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर ये नाजायज है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जो हौसी है ये मक्का और मदीना के ऊपर जो हमले कर रहे हैं ये मुसलमानों को कबूल नहीं है। कभी आपने उनके मुंह से ये तारीफ नहीं सुनी होगी कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान पे हमला, हरमैन शरीफैन के ऊपर हमला, हम इसका बदला लेंगे और किसी को इसकी इजाजत नहीं देगी, और ऐसा हमला करने वाले की जो जसारत है उसे कुचल दिया जाएगा। कभी आपने ये किसी मिनाजी के मुंह से नहीं सुना होगा। लेकिन सुना क्या होगा, आप जरा फेसबुक के ऊपर खोल लें पेज तो आपको हंसी आएगी। लिखा होगा कि जी ताहिरुल कादरी के बगैर दुनिया में इंकलाब नहीं आ सकता। ताहिरुल कादरी के बाप को भी ये खबर नहीं होगी कि ये बयान दिया किसने है, लेकिन बस एक पेड मीडिया है, पेड लोग बैठे हैं और वो अपनी तरफ से बयान दाग रहे होते हैं कि कादरी ने ये कहा, ताहिरुल कादरी के बेटे ने कहा, ताहिरुल कादरी के मिसरी ने ये बात कह दी, उसकी बेटी ने ये बात कह दी, बहू ने ये बात कह दी। और होता क्या है कि वो उनकी जो है वो पिक्चरें उठाते हैं, पिक्चरें भी आप देखें तो अल्लाह इल्ला माशाल्लाह। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ये जो आजकल आप ये फितना देखते हैं कि दरबारों के ऊपर ढोल बाज रहे हैं, नाथ खान आता है और नाथ खान जो है वो बेले लेता है और तरह तरह के

0: कादरी साहब का खिताब जो है वो नेसराया जाता, और कादरी साहब सारी रात खिताब करते, खिताब करके जो है वो ना तो ना किसी ने तौबा इस्तगफार करनी, ना जो है वो किसी ने नमाज पढ़नी, और फजर की नमाज भी नहीं लोग पढ़ते थे। लोग जो है वो दीना से, जेलम से, पिंडी से जो है वो दिन को बसें लेके निकलते, कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, या रोजा चलो किसी ने रखा हुआ है, नमाज नहीं है, वक्त में अफतारी नहीं है, वो लाहौर पहुंचना, वहां पे खाने पे टूट पड़ना, खाने के बाद तरावीह किसी ने 5 पढ़ी, किसी ने 10 पढ़ी, किसी ने 12 पढ़ी, किसी ने 20 भी पढ़ ली, उसके बाद कादरी साहब का खिताब सुनना है, और बसों में बैठना है और वापसी रवानगी। वो जो 27वीं रात का एक इस्लामी तरीका था कि तौबा इस्तगफार करनी है, अल्लाह के हजूर सर मस्जूद होना है, वो सारा खत्म हो गया, वो तकरीर सुनने के ऊपर उसका इक्तफा हो गया। आज यही जो बिदात है, यही जो चीजें हैं, इसको लेके मिनाजुल कुरान चल रहे। तो कादरी साहब जो है वो उन्होंने जो इस्लाम की तजदीद की है वो ये है कि उसमें पॉलिटिकली कंप्रोमाइज्ड इस्लाम के वो नैरेटिव है, वो जिहाद के नैरेटिव नहीं है, और ऐसे इस्लाम के, ऐसी रवायात के मुजद है जिसका कुरान से कोई तलक नहीं है, कुरान में उनकी असल नहीं है। बस यही कादरी साहब का शेख उल इस्लाम है, बल्कि उनके बेटे ने कहा है कि दुनिया देखेगी कि कादरी, वक्त आएगा कि कहेगी कि शेख उल इस्लाम ने ये बात कही थी, शेख उल इस्लाम ने ये मौकफ इख्तियार किया था, और वही आके। तो अगर उनके बेटे हुसैन की अगर बात आप मान लें, तो आइंदा आने वाले चंद सालों के बाद दुनिया ये कहेगी कि जब सीरिया के ऊपर जो है वो इसराइल हमले कर रहा था, जब ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले हो रहे थे, तो अगर वो उन हमलों में यहूद और नसारा का मौकफ दुरुस्त ना होता, तो ताहिर उल कादरी उसकी मुखालफत करते, और ताहिर उल कादरी की खामोशी इसका मतलब ये था कि उनकी तरफ से ताईद थी कि जितना हो सकता है आप गजा को तबाह कर दो, ईरान को तबाह कर दो, सऊदी अरब के ऊपर हमले करो, मेरा इस्लाम ये कहता है कि हम खामोश रहें। गोया खामोश ताईद, ये ताहिरुल कादरी का इस्लाम है, और यही शेखुल इस्लाम का मौकफ है। जी राय साहब,
1: युवा साहब, आपका कीमती टाइम है, आपने कहीं जाना भी होगा, तो आखिर में आप हमारे सामान्य नाज़रीन को बता दें कि ये जो अक़ल की आप बात करते हैं, लोग जो जज्बात से सोचते हैं, एनालाइज़ नहीं करते, ख़ुद जो इस्लामी कुतुब को नहीं पढ़ते, कुरान पाक का मुतालिया नहीं करते, वहाँ बिदत के बारे में पढ़ते नहीं, अल्लाह ताला ने मना किया हुआ मैं सबको माफ़ कर दूंगा लेकिन बिदती को माफ़ नहीं करूंगा, इस तरफ तो जो नहीं देते, जो आपने जिक्र सारी चीज़ों का किया,
0: ये राय साहब, ये बिदात को जो छोड़ दें, ये तो शिर्क के अंदर मुबतला है, ये शिर्क के अंदर मुबतला है, ये कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते इनका। आप मुझे बताइए कि एक बंदा है, वो अपने बेड में सोया है, कर्टन बंद है, रजाई की हुई है उसने, और वो यही सोच रहा है कि जहां मैं लेटा हूं यही सारी कुल कायनात है, उसे आप कैसे समझाएंगे कि भाई बाहर तो रोशनी हो गई है, दिन के 2 बज चुके हैं, वहां पे चहल पहल है, खरीदारी हो रही है, निजाम चल रहा है, सारी दुनिया जो है वो जाग चुकी है, मगर चूंकि वो सोया हुआ है तो वो समझता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। तो मिनाजुल कुरान के लोगों का यही हाल है, उनकी आंखें बंद है, और उनकी आंखें, एक आंख उनकी कानी है और दूसरी खुली है, जो दूसरी खुली हुई है उसमें वो सिर्फ ताहिरुल कादरी को देखते हैं,
1: युवा
0: इसलिए
1: साहब,
0: इनका शऊर उजागर नहीं होता कि ये किसी और को पढ़े, ये किसी और को सुने, ये कोई मतालिया करे, तो इन्हें पता चले कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और
1: जी
0: इनका जो कायद है वो भी कनाडा में बैठा है,
1: जी
0: वहां
1: युवा
0: पे
1: साहब,
0: बैठ
1: ये
0: के
1: जो
0: लोगों को बेवकूफ बना
1: सोशल
0: रहा है।
1: मीडिया पर प्रोपगंडा चलता है, सोशल मीडिया पैसे कमाने के लिए बहुत सारी हरकत की जाती है, तो जब स्टेट के पास इतनी पावर होती है तो स्टेट क्यों इनको इतनी ज़्यादा छूट देता है?
0: स्टेट की तरजीहात गलत है। आज पहली दफा ये ऐसा हुआ है, या पिछले 1-2 सालों में, कि फील्ड मार्शल ने एक फैसला किया कि किसी भी फसादी को, किसी भी इंतहा पसंद को, किसी भी जो है वो तब्दीली के खां को, किसी भी फितना परवर को इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये उनका दलेराना फैसला है। आज उस फैसले के ऊपर वो कायम है, और बतदरीज पाकिस्तान پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی

0: जो खत्म कर रहे हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि उम्मत हुकूमत इस पे कायम रहे, और आप देखेंगे कि अब किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो दोबारा डी चौक में जाके कब्रें खोदे, बल्कि वो तो अपनी जिन्होंने कब्रें खोदी थी वो अपनी कब्र में दफन होने के लिए भी जिंदा नहीं आना चाहते, उनकी मूर्ति आएगी।
1: जिंजुआ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: शुक्रिया साहब।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे शाह जिंजुआ साहब जो कि बरतानिया की फ़िज़ाओं से बात कर रहे थे। सामान्य नाज़रीन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहे, कोई इस पर रोशनी डालना चाहे, कोई अपनी दलील देना चाहे, कोई भी मिराजुल कुरान का साथी आकर अपने टाइम लेकर बात करना चाहे तो उनके लिए अदारा आपकी आवाज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: किस तरीके से
1: चाचा साहब, एक सवाल होता है टेक्निकल, जो लोग
0: हमसे
1: बात करते हैं, मैंने कहा चले आपसे पूछ लेते हैं। गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक पार्किंग है, वो बोर्ड जो लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 3 घंटे की पार्किंग है, उसके ऊपर पार्क करते हैं तो उसका जो देना पड़ता है, पता नहीं, मुझे उसका पता नहीं है, आप बता दीजिएगा। तो जो गाड़ी परमानेंट लोगों ने ली हुई अपनी चार्जिंग की फीस परमानेंट बिलफर्ज 900 करोना, 1000 है, 1200 है, 500 है, 700 है, वो तो इलेक्ट्रिक वाली स्टिक लगा के तो चले जाते, 3 घंटे की तो पार्किंग उनके लिए फ्री है।
0: ऐसी बात है राज साहब, कुछ जगह है जिनमें 3 घंटे की है, कुछ जगह है जिसमें 1 घंटे की है, कुछ जगह है जिसमें आधे घंटे की है पार्किंग चार्जिंग पे प्लेस पे, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह पे है, तो वो उधर वो लगाते हैं स्टिक लगा के वो चले जाते हैं। हाँ, अगर स्टिक वो जो नहीं चार रही है, कोई जुर्माने वाला आ जाता है, जुर्माने को उस टाइम से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो जुर्माना लगा देता है। तो लेकिन ये भी काफी अरसा नहीं चलेगा, ये ज्यादा लोग जब मिस यूज करेंगे तो फिर उनको भी पता चल जाएगा कि ये इसको मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर उसका कुछ हल निकालेंगे।
1: तो सब आपसे पूछूं, आपकी गाड़ी 3 घंटे में चार्ज हो जाती है अगर फास्ट चार्जिंग ना हो तो?
0: मैं राज साहब घर में जब लगाता हूँ ना, तो मैं 10 बजे लगाता हूँ अपने घर में, तो मैं सुबह उठ के 6-7 बजे देखता हूँ तो वो मेरी फुल हुई होती है गाड़ी।
1: लेकिन बाजार में तो 3 घंटे में नहीं चार्ज हो सकती?
0: नहीं, बाजार में नहीं होती, बाजार में नहीं होती 3 घंटे।
1: तो क्या बार बार चार्ज करने से बैटरी को कोई नुकसान होता है?
0: नहीं, बार बार चार्ज करने, हाँ, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी पे फुल 100% चार्ज करें फिर बैटरी को नुकसान होता है, उससे पहले बैटरी को नहीं नुकसान होता, क्योंकि वो तो जितनी दफा मर्जी अभी आप लगाते वो कोई इसका इशू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आप जब 100% इसको करते जाएंगे या हैवी पे, तो फिर गाड़ी इसकी बैटरी को डैमेज होने का खतरा होता है।
1: जो साहब, ये टैक्सी ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच है, चूंकि इसमें हमारे बहुत सारे लिसनर हैं, बात करते रहते हैं, तो ये मुस्तकबिल में क्या बनेगा?
0: मुस्तकबिल में ये जो है ना, बहुत ही चेंजिंग आनी है। अब ड्राइवर फ्री गाड़ियां भी आ रही हैं, उनकी बात की जा रही है अभी का कुछ अरसे से, वो पता नहीं अभी हकीकत है या नहीं है, 1-2 साल के अंदर अंदर वो भी आ जाएंगी। जब वो भी आ जाएंगी तो गाड़ियां उस पे गाड़ी, फिर उसके बाद बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ड्राइवर भी नहीं होंगे उस गाड़ियों में, तो गाड़ियां खुद ही चलेंगी, तो लोग बुक कराएंगे, गाड़ी घर आ जाएगी, बैठ के चले जाएंगे, और उसके बाद ये ड्राइवरों का ये सिस्टम, और ये टैक्सी में कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, क्या कितनी चेंजिंग, कितनी तेजी से ये चेंजिंग जो आ रही है ना, कोई समझ नहीं है कि क्या होगा इसका मुस्तकबिल।
1: अभी खबरें चलती रहती हैं साथ साथ, लोग जो है अपनी जो क्या अहमियत बढ़ाने के लिए भी खबर दे देते हैं कि गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं, बिजली की गाड़ियां, उस पर टैक्स ज्यादा हो जाएगा, चार्जिंग के पैसे ज्यादा हो जाएंगे। लगता है जितनी गाड़ियां आगी वो तो वक्त के लिहाज से सस्ता काम होगा, महंगा होगा?
0: राज साहब, महंगा तो नहीं होगा, महंगा नहीं होगा, ये चार्जिंग जो है ना ये महंगी नहीं होगी, क्योंकि ये जिस तरह तेल और बिजली या जिस तरह का हिसाब इनका होता है ना, उसी हिसाब से, ये नहीं कि गाड़ियां ज्यादा आ जाएंगी तो बिजली महंगी कर देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि और दूसरा यह है कि जितनी गाड़ियां होगी कुछ ना कुछ आपको पता है मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने सेल भी लगाई होती है, जैसे मार्केटों पे होती है, तो कुछ जगह पे होती है कि ये फलां जगह पे है इतनी है, जो है ना आप देख ले सियाकल खो पे है, उन्होंने अपना जो चार्जिंग ऐप जो है उसमें लिखा हुआ है इतना इतना करेंगे तो इतने का होगा, और दूसरे क्यूएट का उसका लादा चार्जिंग है, दूसरा लादा चार्जिंग, तो ये जो मार्केटिंग मार्केट में बैठे हुए लोग हैं ये कोशिश करें ज्यादा ज्यादा उनके चार्जर इस्तेमाल किए जाए जो ना गाड़ी चार्ज करने के लिए, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट तो लगाएंगे फिर, तो ये महंगा मेरे ख्याल में महंगा नहीं होगा।
1: चलो साहब, आपको एक खबर देते चले, चंद लम्हे ब्रेकिंग न्यूज दी है सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो कि थिंक टैंक हैं, वो वेंस्टा पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गल है शाह साहब जी, माशाल्लाह, बड़े मुतर्रक इंसान है और आपके रेडियो पे काफी इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं, और जो है ना पूरा मामला जो कोपनहेगन में चल रहे होते हैं उनमें बातचीत भी करते रहते हैं, तो शाह साहब हमेशा सियासत में इन रहे हैं, डैने सियासत में भी और पाकिस्तानी सियासत में भी, डैने सियासत में काफी उनको नॉलेज भी है, वो पहले काफी अरसे से जो है ना हिस्सा भी ले चुकी है, रहते भी हैं, इन भी रहते हैं, और माशाल्लाह ये कोई नहीं है कि वेंसा पार्टी है या सोशल डेमोक्रेट है या कोई भी है या इन लिस्ट है, ये हम लोगों को सब पार्टियों में जाना चाहिए और सब पार्टियों के साथ हमें मिल के काम करना चाहिए, वर्क करना

0: चाहिए। अगर कोई पार्टी हमारे जो है एंटी है, तो जब हमारे लोग जाएंगे उसमें, जब बैठेंगे तो वो भी लोग देखेंगे कि, और हमारे लोगों के तासरात देखेंगे, बातचीत सुनेंगे, तो लोगों का उनके भी माइंड चेंज होंगे। तो जब उनके उनकी पार्टी में कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर तो वो जो अपने अपने जेहन के मुताबिक जो उन्होंने फैसले करने हैं वो करेंगे, डट के करेंगे। तो इसलिए सब पार्टी, मेरा ख्याल है कि सब पार्टियों में जाना चाहिए, कोई भी पार्टी है जो हमारे खिलाफ भी है उसमें भी जाना चाहिए, हमारी माइंड भी है उसमें भी जाना चाहिए। सब पार्टियों में हमने रहना इधर है, हमने डेनमार्क में ही रहना है, हमारे बच्चों ने भी इधर रहना है। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि इन पार्टियों में इन्वॉल्व हो, यानी सियासत में इन्वॉल्व हो। तो शाह साहब तो माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक है, माशाल्लाह अच्छा ही सोच के उन्होंने कुछ फैसला किया होगा।
1: जो सब हमारी सियासी पार्टियों का क्या मुस्तकबिल है डेनमार्क में?
0: हमारी सियासी, क्या पाकिस्तानी सियासत,
1: जी पाकिस्तानी सियासत की बात कर रहा हूँ
0: जी राज साहब। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका। हमारी पार्टी जो मैं जिसके साथ मुंसलिक था, जो मुस्लिम लीग काफ के साथ, आपको पता है काफी अरसे से जो मेरी, मैं जिम्मेदारियां अदा कर रहा था, तो जब उन पार्टियों ने मेरे जो है ना, पार्टी के कायद जो शुजा साहब जो थे, उन्होंने तो सालक साहब ने ऐलान कर दिया है ना कि बाहर हमारी कोई पार्टी का ओहदा नहीं होगा, किसी को हम कोई ओहदा नहीं देंगे। कोई अपनी मर्जी से कुछ लिखता रहे, कहता रहे, तो हर को उनको घर घर जाके तो नहीं कहना पड़ता ना इंसान को। जब कोई एक लीडर जो बयान देता है, या कोई लीडर जो उनका बयान होता है, उस पर ही अमल करना होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कोई बाहर ओहदा नहीं है, सब बराबर है, किसी भाई को हम नाराज नहीं करते किसी कंट्री में भी कि इसको इसको दे दे, उसको दे दे, ये नहीं है। और जो इशजा साहब ने पहले भी कहा था, फिर सालिक साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि, आपने देखा भी था, आपने फेसबुक पे भी लगाया था, तो ये हमारी पार्टी का तो कोई ओहदा, मैं समझता हूं कि किसी मुल्क में भी उन्होंने कोई ओहदेदार नहीं अब रखा, सारे खत्म कर दिए हैं उन्होंने।
1: चलिए साहब, आखिर में कुछ कहना चाहे, एक मिनट है, दो मिनट है आपके पास, कोई मैसेज देना चाहे।
0: मैं समझता हूँ राजस्थान सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और हमें डेनमार्क में, डेनमार्क की पार्टियों में हिस्सा लेना चाहिए, और डेनमार्क में पार्टियां बना के उनके साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। कम्युनिटी को जो है ना, जो भी मामलात होते हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के, हमारे बुजुर्गों के मसले मसाइल जो है, हमें उनको हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए।
1: तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।
1: सामान नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत, जो कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने अपना मैसेज दिया। समय हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाब ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मज़ सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मज़ सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।